0: କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଛୋଟ ବା ବଡ଼ ନୁହେଁ। ଅତି ଛୋଟ ବା ବଡ଼ କୌଣସି କର୍ମକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମନେ କଲେ ସବୁ ସମାନ ହୋଇଯାଏ। ପୁଣି ଭବାନୀପାଟଣ, ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ 6 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ପରେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ से भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ियाँ परिचालन में हैं। इनमें जर्मनी, जापान, चीन और संयुक्त राज्य अमरीका शामिल हैं।

0: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री इसके बाद चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। इसके बाद श्री मोदी जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाएं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केरलम में 6 पुनर्निर्मित अमृत रेलवे स्टेशनों के साथ देश भर के 75 अन्य अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। केरलम के इन स्टेशनों से राज्य में रेलवे के बुनियादी ढांचे और यात्रियों की सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होने की संभावना है। इन उन्नत स्टेशनों में आधुनिक प्लेटफॉर्म, बेहतर भवन, आधुनिक प्रतीक्षा कक्ष और यात्रियों के लिए उन्नत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इनका उद्देश्य यात्रियों को अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करना। गृहमंत्री आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में सदन में अपनी रणनीति को अंतिम रूप देगा। इस बैठक में NDA के विधायी एजेंडे, गठबंधन के सहयोगियों के बीच समन्वय और सत्र के दौरान विपक्ष का सामना करने के लिए एकीकृत रणनीति पर ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से अधिक परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश में आज माय भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 से बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by V.C. Pramod. Prime Minister Narendra Modi will visit Haryana, Chandigarh and Punjab today. During his visit to Haryana, the Prime Minister will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station. He will also lay the foundation stone and dedicate to the nation various development projects worth around 14,700 crore rupees at the Eklavya Stadium in Jind and address the gathering on the occasion. Our correspondent reports that the launch of the first hydrogen-powered train marks an important step towards the adoption of clean and sustainable mobility in the railway sector.
3: India has set a new global benchmark with this project, while countries like Germany and China

0: एतस्मिन् क्रीडाङ्गणे आयोज्यमाने अन्तिमायां निर्णायकशृङ्खलायां परस्परं स्पर्धिष्यतः इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी भवानी पटना समय वर्तमान सकाळ 7:00। श्रोताबंधु शुणंतु आज आम केन्द्र प्रचारित होगा कार्यक्रम संपर्क सूचना सकाळ 7:25 शुणिबे स्वच्छ भारत अभियान पर आधारित कार्यक्रम स्वच्छ जीवन श्रीरामचरित मानस सकाळ 7:30 सकाळ 7:40 शुणिबे चासर कथा सकाळ 7:45 शुणिबे धारावाहिक नाटक आज्ञा बड़ असुविधा हेउछि रचना प्रफुल्ल कुमार रथ प्रयोजन रंजन कुमार बेहरा सकाळ 8:30 श्रीक्षेत्र माधुरी कार्यक्रम रिले करी प्रचार करिवो आकाशवाणी कटक केन्द्ररु एथिरे श्री गुंडीचा मंदिर विशेष नीति संपर्क शुणिबे प्रयोजन प्रदीप्त कुमार श्रीचंदन कविसम्र रूपेन्द्र भंज कृत महाकाव्य वैदेहीश विलासर संगीतात्मक परिवेशन शुणिबे सकाळ 8:45 हिंदी कथचित्रर गीत प्रचार करिवो सकाळ 9:00 सकाळ 9:30 शुणिबे ओडिया कथचित्रर गीत विशेष कार्यक्रम खोला चरका दिन 10:10 दिन 12:00 प्रचार करिवो लोकगीत क्रमरे छत्तीसगढ़ी गीत परिवेशन करिबे शांतिबाई चेलक ओ साथी दिन 12:30 सुगम संगीत दिन 12:45 देवगिरी मठरे अनुष्ठित होइतिबा रथयात्रार बेतार विवरणी दिन गोटे 10 मिनिट्रे चासर कथा विभिन्न स्वादर गीतक शुणिबे विचित्र कार्यक्रम दिन गोटे 20 मिनिट्रे हिंदी कथचित्रर गीत दिन 2:45 अपराह्न 5:00 शुणिबे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग युववाणी कार्यक्रम संभावना प्रचार करिवो अपराह्न 5:30 संध्या 6:30 शुणिबे आदिवासी गीतक्रम टेक्रिया कंध गीत परिवेशन करिवे राधामणि ओ साथी राति 7:25 जिला हालचाल क्रम शुणिबे सुवर्णपुर जिला संपर्क आकाशवाणी कटक केन्द्ररु चासपास कार्यक्रम राति 7:30 गीत व गजल कार्यक्रम राति 8:00 राति 8:15 शुणिबे भवानीपाटणा ठारे अनुष्ठित होइथिबा रथयात्रार बेतार विवरणी राति 8:30 स्पोर्ट्स केन राति 9:16 स्पॉटलाइट और राति 9:30 करंट अफेयर्स ए समस्त कार्यक्रम रिले करी सुनाइबो आकाशवाणी दिल्लीरो राति 10:00 शुणिबे महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर पवित्र रथयात्रा उपलक्ष्य नाटक गीतनाट्यर प्रसारण क्रमरे नाटक पुरुषोत्तम देव रचना गोदावरी समिश्र बेतार रूपांतर और परिचालना मनोरंजन मेदास एथिला आज आम केन्द्ररु प्रचारित होबाक थिबा कार्यक्रम संपर्क सूचना आकाशवाणी भवानीपटना परवर्ती कार्यक्रम रिले करी प्रचार करछु आकाशवाणी कटक केन्द्ररु।

वन गमन के लिए विदा लेने आए हुए पुत्र के वचन सुनकर माता कौशल्या स्तब्ध रह गई हैं। आसन्न पुत्र वियोग उनके सम्मुख एक भीषण दुविधा बनकर खड़ा हो गया है। न तो वे श्री राम को अपने पास रख सकती हैं, न ही वन जाने की आज्ञा दे पाती हैं। एक ओर धर्म तथा दूसरी ओर ममता ने ऐसा धर्म संकट उपस्थित कर दिया है जिससे त्राण पाना कठिन है, किंतु विजय कर्तव्य रूपी धर्म की होती है। धैर्य ममता के प्रवाह में अडिग खड़ा होकर कहता है, पिता की आज्ञा का पालन ही सबसे बड़ा धर्म है। राज्य देने के स्थान पर पिता ने वनवास दे दिया, इसका मुझे तनिक भी दुख नहीं है। किंतु भरत, स्वयं महाराज तथा प्रजाजन क्या तुम्हारा वियोग सहन कर सकेंगे? हे तात, यदि केवल पिता की आज्ञा हो तो माता को उनसे अधिक मान और महत्व देकर वन को न जाओ। किंतु यदि माता और पिता दोनों ने वन गमन के लिए कहा है तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है।

0: পরবর্তী কার্যক্রম সমাচার প্রভাত মর্নিং নিউজ রিলে করে প্রচার করছু আকাশবাণী দিল্লি রো এবং পরপর শুনবে শ্রীক্ষেত্র মাধুরী আকাশবাণী কটক কেন্দ্র রো।
1: पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए के स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित किए। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 लोगों को पाटन जिले से गिरफ्तार किया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है और उन कई देशों से आगे निकल गया है जो अभी इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। जहां जर्मनी और चीन जैसे देश आमतौर पर 2 या 3 कोच वाली छोटी हाइड्रोजन ट्रेन चलाते हैं, वहीं भारत ने 10 कोच वाली ट्रेन विकसित की है। इस ट्रेन की क्षमता लगभग 2600 यात्रियों को ले जाने की है, जो दुनिया भर की अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 3200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है। इस प्रक्रिया में केवल जल वाष्प उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेल संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जींद।
2: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जींद के बाद वे चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के बाद SCS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब और श्री अनंतपुर साहिब रेलवे स्टेशनों सहित 20 राज्यों के 74 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का जलंधर से ही वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इन स्टेशनों का पुनर्निर्माण दुनिया के सबसे बड़े स्टेशन पुनर्विकास प्रोग्राम में से एक अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत किया गया है। वह जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन से संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। यह भारत के दो सबसे पवित्र आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली डायरेक्ट रेलगाड़ी है, जो हफ्ते में 3 बार चलेगी। प्रधानमंत्री नंगल डैम, तलवाड़ा, मुकेरियां नई रेल लाइन प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर दौलतपुर चौक करतौली नई रेल लाइन का भी उद्घाटन करेंगे और करतौली अंबाला ट्रेन सर्विस को हरी झंडी दिखाएंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे आज तीनों राज्यों के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इनका सबसे अधिक लाभ देश की युवा शक्ति को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इनमें केरल के 6 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप नीति और इसके कार्यान्वयन के लिए नीतिगत ढांचे को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस नीति के तहत नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में 400 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा।
4: नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस नीति के अंतर्गत दिल्ली सरकार वार्षिक दिल्ली स्टार्टअप युवा महोत्सव का आयोजन करेगी। इसमें नवाचार करने वाले युवा, शैक्षणिक संस्थान, स्टार्टअप, निवेशक, उद्योग जगत और नीति निर्माता एक मंच पर आकर नए विचारों का प्रदर्शन करेंगे, साझेदारियां विकसित करेंगे और युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करेंगे। शुरुआत में यह नीति 11 राज्य विश्वविद्यालयों, 13 सरकारी वित्त पोषित कॉलेजों, पॉलिटेक्निक संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और सरकारी स्कूलों में लागू की जाएगी। सरकार पात्र शैक्षणिक संस्थानों में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए एक मुश्त वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसका उद्देश्य राजधानी को देश के अग्रणी नवाचार और उद्यमिता केंद्र के रूप में विकसित करना है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। एजेंसी ने कहा है कि परिणाम समय पर घोषित किए गए हैं ताकि उम्मीदवारों के लिए प्रवेश और काउंसलिंग कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहे। इस वर्ष भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में स्थित 5,440 केंद्रों पर लगभग 20 लाख उम्मीदवारों ने पुनर्परीक्षा दी थी। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ATS ने प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक कथित आतंकी मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ATS के अनुसार इन आरोपियों को पाटन जिले के खड़ियाल गांव से गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के नाम इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए जैश ए मोहम्मद के 8 कथित सदस्यों से पूछताछ के दौरान सामने आए थे। जिला न्यायालय ने सभी आरोपियों को 24 जुलाई तक ATS की हिरासत में भेज दिया है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमाकांच सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल BSF से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा संबंधी मुद्दों पर एक बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। केरलम में आज से रमाण मास का शुभारंभ हुआ। केरलम में मलयालम पंचांग के कंगंडम महीने को रमाण मास के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान श्रद्धालु आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक शांति के लिए रमाण का पाठ करते हैं। आज से करगिडगम महीने की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही आज से राज्य के अनेक घरों और मंदिरों में प्रतिदिन रमाण पाठ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बात की और उनके और पिता अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक

0: पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कतर के अमीर की अमर विरासत दोनों देशों को उनकी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने में मार्गदर्शन करती रहेगी। उन्होंने भारत और कतर में भारतीय समुदाय के प्रति स्नेह और भारत कतर संबंधों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को भी याद किया। ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर कश्मीरी प्रवासियों ने पाकिस्तान के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमन की ओर ध्यान देने की अपील की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सुरक्षा बलों ने लोगों की हत्या, जबरन हिरासत, घरों पर छापेमारी और आम नागरिकों, महिलाओं तथा बच्चों के खिलाफ हिंसा की है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने वामपंथी चरमपंथी आतंकवादियों को देश में प्रवेश करने से रोकने के लिए नई वीजा प्रतिबंध नीति लागू की है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ये नीति ऐसे तत्वों को रोकने के लिए है जो हिंसक गतिविधियों के जरिए लोगों की सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और राजनीतिक प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल देखने के लिए रविवार को न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। फाइनल मुकाबला मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। फुटबॉल विश्व कप संयुक्त रूप से राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया और न्यू जर्सी में होने वाले फाइनल के साथ इसका समापन होगा। फुटबॉल में भारत की महिला टीम को AFC अंडर 17 अगले वर्ष होने वाले एशियन कप क्वालिफायर के ग्रुप ई में मलेशिया, सीरिया और इराक के साथ रखा गया है। भारत लगातार दूसरी बार महिला एशियन कप के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। नीट पेपर लीक के बाद अभूतपूर्व सुरक्षा के बीच आयोजित नीट UG 2026 का परिणाम घोषित होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी है। हिंदुस्तान लिखता है नीट UG का परिणाम जारी, सफल होने वालों में 58% छात्राएं। अमर उजाला के शब्द हैं पंजाब के आर्यन और हरियाणा के पंशुल अव्वल, 19 बच्चों को 700 से अधिक अंक। अमेरिका और ईरान के बीच ताज़ा सैन्य संघर्ष को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाया। जनसत्ता ने इस खबर को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है होर्मुज पर जहाज़ों में भारतीय नागरिकों की तैनाती पर रोक, नौवहन प्रशासन महानिदेशालय का निर्देश। पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा में भगदड़, एक श्रद्धालु की मौत, लोकसत्ते की सुर्खी है। पत्र लिखता है खराब मौसम और बारिश के बाद उमड़ी 10 लाख की भीड़। राजधानी में 16 साल के बाद सबसे लंबा मानसून ब्रेक। दिल्ली में अगले 4-5 दिन और अच्छी बारिश होने की उम्मीद बेहद कम, हिंदुस्तान की सुर्खी है। दैनिक भास्कर ने अनुमान शीर्षक से खबर दी है दो नए सिस्टम से रफ्तार पकड़ेगा मानसून, 20 से उत्तर और मध्य भारत में तेज बारिश, 40 से अधिक देशों के साथ साझा समुद्री अभ्यास, 20 जुलाई से होगा, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है कोची स्थित सदर्न नेवल कमांड में होगी ऑपरेशन की शुरुआत। लोकसत्ते ने साइबर अपराध पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, शीर्षक दिया है डिजिटल भारत पर साइबर अपराध का साया। पत्र लिखता है साइबर अपराध की सबसे चिंताजनक बात है कि इसकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती। दुनिया के कई देशों में बैठे अपराधी भारत के नागरिकों को अपना निशाना बना रहे हैं, ऐसे में सभी को सावधान रहना जरूरी है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए के स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट UG पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित किए। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 लोगों को पाटन जिले से गिरफ्तार किया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

प्रचार कलु कवि सम्राट उपेन्द्र भंज कृत महाकाव्य वैदेहेश विलासर संगीतात्मक परिवेशन प्रयोजना करथिले डॉक्टर शांतन कुमार रथ और प्रसन्नजीत महांति संगीत निर्देशन देथिले डॉक्टर सुचित्रा महापात्र वर्णनारे थिले डॉक्टर शांतन कुमार रथ कंठशिल्पी मैंने थिले गीताराणी दास दिवाकर महांति सेवाराणी महापात्र और घनश्याम पंडा आकाशवाणी भवानीपाटणा।

नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

रहना है तेरे दिल में कथा चित्रण श्रंतु गायछंती सन गीत रचना करिछंती शमीर संगीत निर्देशन देछंती हरीश जयराज।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: पवित्र रथयात्रा उपलक्षे सुभद्रा शक्ति बजार आपनकु जणाउछि असुमारी शुभेच्छा। एही शुभ अवसर रे सुभद्रा शक्ति बजार रे एसएचजी मा मानंक हात तयारी हस्ततंत ओ हस्तकला सामग्री सहित मिलिट्रु प्रस्तुत विभिन्न जैविक सामग्री रो अपूर्व संभार। पवित्र घोष यात्रा उपलक्षे सुभद्रा शक्ति बजार रे विभिन्न क्रय उपरे स्वतंत्र रिहाती। आसंतु आपनक अपेक्षा रे सुभद्रा शक्ति बजार एसआईआरडी कैंपस यूनिट 8 भुवनेश्वर।
1: सुरक्षा नियमावली अवलम्बन करंतु एवं सुरक्षित रहंतु।
2: ओडिसार विभिन्न स्थानरे अनुष्ठित हेउथिबा पवित्र रथयात्रार आयोजक मानंकु विद्युत सुरक्षा नियमावली पालन करबाकु अनुरोध करा जाउछि।
1: रथकु निर्धारित मार्गरे सुरक्षित भाबरे नेबापई स्थानीय विद्युत वितरण कार्यालयरे लिखित भाबे जणंतु।
2: पूजा पेंडल, यात्रा स्थली, होटल, दोकान बजार अधिक जनसमागम स्थानरे वैद्युतिक उपकरणर सुरक्षा जांच पई स्थानीय विद्युत निरीक्षकंकु लिखित भाबे अवगत करंतु। शक्ति विभाग ओडिशा सरकारंक द्वारा जनहितरे जारी।

नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
1: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
0: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
1: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

0: हमारे संवाददाता से।
1: इस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है और उन कई देशों से आगे निकल गया है जो अभी इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। जहां जर्मनी और चीन जैसे देश आमतौर पर 2 या 3 कोच वाली छोटी हाइड्रोजन ट्रेन चलाते हैं, वहीं भारत ने 10 कोच वाली ट्रेन विकसित की है। इस ट्रेन की क्षमता लगभग 2600 यात्रियों को ले जाने की है, जो दुनिया भर की अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 3200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है। इस प्रक्रिया में केवल जल वाष्प उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेल संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जींद।
2: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास

0: उद्घाटन करेंगे। जींद के बाद प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज पंजाब के जालंधर से 5,770 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। श्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। गृह मंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकवाद रोधी दस्ते ATS ने प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक कथित आतंकी मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ATS के अनुसार इन आरोपियों को पाटन जिले के खड़ियाल गांव से गिरफ्तार किया गया। गुजरात ATS ने गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से जैश ए मोहम्मद के 8 सदस्यों को इस महीने गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार ये आरोपी गुजरात में आतंकी नेटवर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से अधिक परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट NEET.NTA.NIC पर उपलब्ध हैं। इस वर्ष भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में स्थित 5,440 केंद्रों पर लगभग 20 लाख उम्मीदवारों ने पुनर्परीक्षा दी थी। उत्तर प्रदेश में आज माय भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप नीति और इसके कार्यान्वयन के लिए नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी है। इस नीति के अंतर्गत नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के अगले 5 वर्षों में 400 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और ओडिशा में विभिन्न स्थानों पर तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी आज मूसलाधार वर्षा की संभावना है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कुछ स्थानों पर ऐसा ही मौसम रह सकता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. Prime Minister Narendra Modi will visit Haryana, Chandigarh and Punjab today. During his visit to Haryana, the Prime Minister will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at the Jind railway station. The Prime Minister will also lay the foundation stone and dedicate to the nation various development projects worth around 14,700 crore rupees at Eklavya Stadium at Jind and address the gathering on the occasion. The launch of the first hydrogen-powered train marks an important step towards the adoption of clean and sustainable mobility in the railway sector. From Jind, the Prime Minister will travel to Chandigarh, where at around 1:45 PM he will lay the foundation stone and inaugurate various development projects worth over 4,700 crore rupees. He will also address the gathering on the occasion. Subsequently, Prime Minister will visit Jalandhar in Punjab, where he will lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth over 5,470 crore rupees. Prime Minister Modi held a conversation with the Amir of Qatar, Sheikh

0: ଶେଷ ଅବସର। ଇମୋଜି ଆମ ଭାବନାକୁ ସରଳ, ଦ୍ରୁତ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେବେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ସର୍ବଦା ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଓ ସଂଯମ ସହିତ କରିବା ଉଚିତ। ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ଇମୋଜି ଆମର ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ମଧୁର କରିବା ସହିତ ଡିଜିଟାଲ ଜଗତକୁ ଅଧିକ ସକାରାତ୍ମକ ଓ ସଜୀବ କରି ରଖିଥାଏ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱ ଇମୋଜି ଦିବସ ପାଳନ କରି ଆମେ ଡିଜିଟାଲ ଯୋଗାଯୋଗର ଏହି ସୃଜନଶୀଳ ମାଧ୍ୟମର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: राजा काशी नरेश के तीन कन्याएं,
1: वाह वाह,
0: अंबा अम्बालिका अंबिका, और तीनों कन्या के राजा काशी नरेश रखे हैं स्वयंवर। देश देश से राजा चले। रागी, हस्तिनानगर से संतानों पुत्र भीष्म पितामह अपने भाई चित्रांगद विचित्र वीरिया ये दोनों रथ में बैठा है।
1: हाँ जी।
0: और ले घोड़ा के लगाम, एक एक टापू उठे तो भैया चले टभाग टभाग टभाग टभाग टभाग। अरे रथ आगे चले।
1: हाँ जी।
0: चले भैया टप टिप टप टिप टप टिप टप टिप टप टिप टप टिप गर के रथ चले।

0: राजा काशी नरेश नजर लगाए, ध्यान लगाए, हमने स्वयंवर रखे हैं, तीनों कन्या के सारे राजा में बुलावा भेजे हैं। कौन राजा आए हैं, कौन राजा नहीं आए हैं?
1: अच्छा,
0: लेकिन सबो राजा न्योता में आए हैं भैया।
1: हाँ।

0: देश के है।
1: हाँ जी
0: भाई, हमारे तीनों कन्या के पांव से लेके सर तक सारे आभूषण पहना स्वयंवर में लाए जाए।
1: हाँ जी।
0: अरे तीनों कन्या करे श्रृंगार, पांव से लेके सर तक सुंदर श्रृंगार करे तीनों कन्या, ले स्वयंवर के बीच में लाए भैया।
1: हाँ जी।
0: ले हाथ में वरमाला और तीनों कन्या चले झन्नाक झन्नाक झन्नाक झन्नाक झन्नाक। अरे सुंदर नौजवान कन्या ला देख के।
1: हाँ जी।
0: रागी।
1: हाँ।
0: कोनो राजा तो कालर में हाथ दे।
1: वाह वाह।
0: अरे कोनो राजा तो भैया अपने मुंछ में हाथ दिए।
1: अच्छा।
0: अरे कतको राजा तो अपने बाड़ी दिखा कर कहे कमाल है यार कमाल है। अरे नौजवान छोकरी देख के हाथ मलते रहे, कुर्सी तोड़ते रहे और जवान देखते रहे। कहे बरमाला डालेगी 18 साल के नौजवान कन्या तो हम जैसे जवानों के गले में डालेगी।

0: लेकिन तीनों कन्या वरमाला हाथ लिए हैं, स्वयंवर के बीच घूमते रही। पितामह देख के कहे, आ अरे ये सुंदर टूरी ला देख के,
1: हाँ जी,
0: यज्ञ देश के राजा कहीं उठा ना ले।

0: और कन्या ले, यन्य देश के राजा उठा न ले।
1: हाँ जी।
0: भीष्म पितामह उठे सिंहासन से और चले भैया सनफीन। अरे ये बुढ़वा के सवाद ले तो देख।
1: हाँ जी।
0: ऐसे छलांग लगाए जा रहे यार मानो मिर्गा के समान।
1: हाँ जी।
0: झुर्री पर गए चेहरा, पक गए सर के केस, और नौजवान देख कन्या देख ये तो कूद पड़े हैं।
1: हाँ जी।

गाली मार के हंसे, ठठा के हंसे, अरे लोग ललकार के हंसे, लेकिन पितामा ना किसी के ओर देखे और ना ही पितामा किसी के सुने।

0: पितामह निकल पड़े तीनों कन्या के ओर।
1: हाँ जी।
0: तो रागी ये तीनों कन्या ले पकड़े पितामह। तीनों कन्या डर गई, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, भगने लगी। लेकिन पितामह मानो शेर के समान तीनों कन्या ले लिए पंजा में।
1: हाँ जी।
0: और बैठा लिए रथ में। जब रथ आगे निकलने के शुरू करें तभी आवाज लगाए, रुक जाइए पितामह।
1: हाँ जी।
0: रुक जाइए, एक साथ तीन कन्या उठाना अन्याय है। हम सब राजा के साथ में लड़ना होगा।
1: हाँ जी।
0: इस समय कहे हम लड़ने के लिए तैयार हैं।

0: आगी बाण, पानी बाण, हवा बाण, सर्प बाण, गरुड़ बाण, अंधकार बाण, प्रकाश बाण, शक्ति बाण, सहस्त्र बाण। अरे बाण चले चारों तरफ से, भैया एक एक करके पितामह सारे राजा हरा दिए। और रथ जब आगे बढ़ाए तभी सालव आवाज लगाए, ऐ पितामह हम सालव नरेश हैं, हम इस कन्या के लिए लड़ना चाहते हैं।
1: अच्छा।
0: पितामह कहे हम लड़ने के लिए तैयार हैं।
1: हाओ।
0: करे जीवा में बाण, करे जीवा में बाण।

0: लगा बन।
1: हाँ जी।
0: साल में हार गए और तीनों कन्या लेके पितामा गए हस्तिनानगर। अरे रंग मंडप तैयार है, वहां कथा कहने वाले शादी कराने वाले पंडित मंडप सारे तैयार हवे रागी।
1: हाँ जी।
0: तो भाई अपने भाई चित्रांगदा के लिए अम्बाइल का विवाह कर दिए। भाई भी चित्रिया के लिए अम्ली का विवाह कर दिए। दो भाई के लिए अपने दो बहन के शादी देखे तो अम्बा पूछे हैं, महाराज आ अरे रंग मंडप तैयार है और हमार दो बहनी के बिहार तुम्हार दो भाई संग हो गए।
1: हाँ जी।
0: लेकिन हमार अरे हमार दुल्हा राज

0: बताओ जी।
1: अरे वाह, आप जब ब्रह्मचारी हैं महाराज तो हमें उठा कर क्यों ले आए? हम तो मन ही मन सालवा को चाहती थी।
0: अच्छा?
1: तो ठीक है, पहुंचा देते हैं। पहुंचा दिए गए सालवा नरेश के पास। राजा सालवा नरेश बैठे सिंहासन में, बैठे दरबार में।

जब देखे अम्बा तो पूछे, अरे ओ अरे अम्बा, यहाँ तू कैसे चली आई? अम्बा हंस के कहे, महाराज मैंने साफ साफ शब्द में बता दी महाराज। अरे हमार दुल्हा राजा कोनो दूसर नहीं, आप हैं महाराज। अरे आप भी तो हमें चाहते हैं ना? शालवा कहे, अम्बा हम चाहते थे लेकिन अब नहीं, क्योंकि किसी राजा ने तेरे अपहरण कर लिए, किसी राजा ने तुम्हें समाज से उठा कर ले गए। भला हम उस अम्बा के साथ कैसे विवाह करें?

अम्बा तू यहाँ से जा रही है, बाहर निकलवा दूं। अम्बा कहे क्या ये राजा के दरबार में माथ रगड़ रगड़ के कहूँ राजा मुझे विवाह ले, शादी कर ले, नहीं तो कहीं के नहीं रहूंगी, या वह पिता के द्वार जाऊं जिन्होंने मेरे मन के बात जाने बिना सीधे स्वयंवर में ला के किसी सौदा के तरह खड़ा कर दिए, या वह पिता माँ के भवन जाऊं जिन्होंने मुझे स्वयंवर से उठा कर लाए।

0: करूं, या नदी नाला में कूद के मर जाऊं, या आत्महत्या कर लूं।
1: हाँ जी
0: रागी, आज घलो हमारे समाज में बात यही होते है, अधूरे शादी करके बेटी छोड़ दिए जाते।
1: हाँ जी,
0: दाहेज प्रथा में औरत जला दिए जाते, बलात्कार कर कन्या छोड़ दिए जाते। तो आज भी हमारे समाज में वो कन्या लज्जिए का अधिकार है या नहीं?
1: हाँ जी।

0: हमें जीना है।
1: हाँ जी।
0: हमारे अंदर की औरत है उसे बाहर निकाल कर जीना है।
1: हाँ।
0: और हमारे शत्रु कोनो अन्य नहीं, कोई दूसर नहीं, हमारे शत्रु तो पितामह है। उसे मारने के लिए हमें जीना होगा।
1: हाँ जी।

0: में जीना होगा।
1: हाँ जी,
0: हमारे अंदर की औरत है उसे शक्ति लेकर जीना होगा। भाई शक्ति है कहाँ, शक्ति है कहाँ, शक्ति है भक्ति में।
1: हाँ जी,
0: भक्ति करके हमें शक्ति लेना है करके अम्बा देवी ने ठान ली और ठान के सीधे साधु संतों की आश्रम में चले गई।
1: हाँ जी,

0: होगा।
1: हाँ
0: भाई शक्ति है कहाँ, शक्ति है कहाँ, शक्ति है भक्ति में।
1: हाँ जी,
0: भक्ति करके हमें शक्ति लेना है करके अम्बा देवी ने ठान ली और ठान के सीधे साधु संतों की आश्रम में चले गई।
1: हाँ जी,

0: अरे वाह अम्बा, मृगड़ैणी आंख, गुलाब जैसा खिले हुए होठ, 18 साल के नौजवान कन्या, ये आश्रम में कैसे देवी जी, साधु संतों के बीच कैसे?
1: आओ जी।

आज हमें शक्ति लेना है। पिता माँ मारने के लिए हमने प्रण किया है, उसे मारने के लिए आपके बीच हमें शक्ति लेना है भक्ति से। अरे ओ, आप भक्ति करने आए हैं और नौजवान कन्या देख के किसी राजा महाराजा ने मिर्गा मारते आए और तुम्हें उठा के कहीं ले गए, रक्षा नहीं कर पाए, तो हमारे भक्ति पूजा जो है ना उसमें खंडन ना हो जाए देवी। अरे आपके रक्षा में गए तो पूजा अधूरा, और पूजा करने बैठे आपके रक्षा नहीं कर पाए तो अन्याय अधर्म। तो इस समय पूजा भक्ति नहीं, किसी राजा महाराजा के रानी बन के महल में रहना चाहिए। अम्बा कहे आप लोग भी बिल्कुल घोचू हैं महाराज। अरे राम भक्त जो होते हैं ना उनके अंदर तो ताकत होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए और सहमत के भावना होना चाहिए। लेकिन ये आप कमजोर हैं, हम नहीं, हमें तो भक्ति करना है, पूजा करना है और यही करना है।

अम्मा देवी लगा लिया परमात्मा में ध्यान, लगा लिया भक्ति में मन तन मन, अपने आप को परमात्मा में लगा के पूजा में लीन हो गई, तभी अम्बा के नाना होत्रवान आ गए वहां। पूछे बेटा अम्बा, अरे तू क्या कर रही है?

पितामा तब तो हमसे लड़ना होगा। पितामा कहे हम लड़ लेंगे बाबा, लेकिन अपने नियम नहीं तोड़ेंगे। तो उठा धनुष कहे, खींचे त्रों से बाण और लगाए निशाना।

0: भले नाना हमें पितामह मानने के लिए तपस्या कर रहे हैं, करना है।
1: हाँ जी।
0: तो कहे बेटा एक औरत की न्याय दिलाने वाले परशुराम गुरु है। चलो बेटा हमें परशुराम के पास जाना है।
1: अच्छा।
0: जब अम्बा लेके पहुँचे परशुराम के पास रागी,
1: हाँ जी,
0: सारे बात बता दिए, हमारे शत्रु तो कोई दूसरा नहीं पितामह है। तो परशुराम जी ने पितामह के पास में लेकर अम्बा को गए, बोले पितामह आप तो हमारे शिष्य हैं और हम गुरु हैं,
1: हाँ जी,
0: तो कहना मानिए, अपने नियम तोड़ दीजिए, अपने संयम तोड़ दीजिए, आपने स्वयंवर में जाकर इसे उठाए हैं तो अम्बा से विवाह करिए।
1: हाँ जी।
0: पितामह कहे नहीं महाराज नहीं, हम ब्रह्मचारी हैं और ब्रह्मचारी रहेंगे।
1: ओ।
0: परशुराम

0: परशुराम पूरे 7 दिन बिता लिए।
1: हाउ जी,
0: 7 दिन 7 रात हो गए, दोनों के लड़ाई बराबर रहे, दोनों के बाण बराबर चले।
1: हाउ जी,
0: परशुराम कहे पितामह हम मार तो सकते हैं लेकिन नहीं, हमार शिष्य हो, लो बज शक्ति बांध लो।
1: हाँ जी,
0: जब तक लिए बाण हाथ रही तो जीवित रही हो, और बाण छूटे से ही बाण में तुरकाल है।
1: आओ
0: बेटा अम्बा चले। अम्बा कहे बाबा आपके खेल खत्म हो गए, बाबा आपके खेल खत्म हो गए।
1: हाँ जी,
0: लेकिन हमार खेल तो यहीं से शुरू होने वाली है। अम्बा ललकार के कहे पितामह, अरे साधु संतों के काम है औरत के तरफ सीधा नजर देखना पाप है, और आपने तो मेरे हृदय में हाथ डाल दिए।
1: अच्छा,
0: मेरे अपहरण कर लिए, समाज से मुझे उठा लिए, कहीं के नहीं छोड़े।
1: हाँ जी,
0: अरे तुम्हें मारने के लिए मैंने प्रतिज्ञा कर ली है, और जब धरती में मैं मारने के लिए जन्म लेके आ जाऊं तो एक जन्म क्या, मुझे दो चार जन्म लेना पड़े तो जन्म लेने के लिए मैं तैयार हूँ।
1: हाँ जी,
0: लेकिन जब मैं रणभूमि में उतर जाऊं तो तय निहत्ता हो जाबे, मोर चेहरा देख के तुहे सर में आ जाही, ये श्राप देते हुए अम्बा देवी है सीधा निकल गई।
1: वाह वाह,
0: विष्णु का देवा कर पूजा करे,
2: सुनुथिले लोकगीत क्रमरे शिल्पी शांतिबाई चलक एवं साथीक परिवेशित छत्तीसगढ़ी गीत।
3: जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान, जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
4: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हाल।
5: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में

0: 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: पवित्र रथयात्रा उपलक्षे सुभद्रा शक्ति बजार आपनकु जणाउची असुमारी शुभेच्छा। एही शुभ अवसर रे सुभद्रा शक्ति बजार रे एसएचजी मा माननको हात तयारी हस्ततंत ओ हस्तकला सामग्री सहित मिलिट्री प्रस्तुत विभिन्न जैविक सामग्री रो अपूर्व संभार। पवित्र घोष यात्रा उपलक्षे सुभद्रा शक्ति बजार रे विभिन्न क्रय उपरे स्वतंत्र रिहाती। आसंतु आपनको अपेक्षा रे सुभद्रा शक्ति बजार एसआईआरडी कैंपस यूनिट 8 भुवनेश्वर।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: ଦେବଗିରିଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରାର ବେତାର ବିବରଣୀ ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଦିନ ଗୋଟାଏ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସାରଣ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ପରେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କିଛିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पूरी तरह से स्वदेश में बनाई गई ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जींद में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस अवसर पर एक जनसभा में उन्होंने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत को देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया।
2: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
1: जींद के बाद प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधा और आर्थिक विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाछ के सीमा चौकी स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 18वीं बटालियन का दौरा करेंगे, जहां वे प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे, वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह का बीएसएफ कर्मियों से बातचीत का भी कार्यक्रम है। गृहमंत्री सिलीगुड़ी के उत्तर कन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक मामलों, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी और अगले आदेश तक लागू रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जुलाई से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगे। ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये दौरा भारत के इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र के साथ सहयोग को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय डीजीएमए ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। महानिदेशालय की सलाह खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 790 अंक बढ़कर 77,977 जबकि निफ्टी 205 अंक की बढ़त के साथ 24,277 पर कारोबार कर रहा था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का परिणाम घोषित कर दिया। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल दंत चिकित्सा आयुर्वेद और संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Ash of the news, read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today flagged off in-powered train between Jind and Sonipat at Jind railway station in Haryana. The launch of the first hydrogen-powered train marks an important step towards the adoption of clean and sustainable mobility in the railway sector. On the occasion, the Prime Minister also dedicated to the nation as well as laid foundations of national highway projects worth over 12,470 crore rupees in Haryana. Mr. Modi dedicated the 157-kilometer-long Delhi-Amritsar-Katra Expressway. The Greenfield Corridor forms part of the 667-kilometer Delhi-Amritsar-Katra Expressway. The expressway will reduce travel time between Delhi and Katra from nearly 14 hours to about 6 hours, while cutting the Delhi-Amritsar journey from about 8 hours to 4 hours. Addressing the gathering, Prime Minister Modi said, over the past 12 years, Indian Railway has witnessed major transformation. He noted that Haryana has witnessed a new phase of development in recent years and has moved forward on the path of progress. Mr. Modi added that the launch of the country's first hydrogen train has given Jind a special place in India's history.
2: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जिंद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
3: Speaking on the occasion, Union Railways Minister Ashwini Vaishnav termed the launch of India's first hydrogen-powered train as a historic achievement in the country's technological advancement. He noted that of a strong national resolve to develop indigenous hydrogen technology. Mr. Vaishnav emphasized that the train is completely environment-friendly with no requirement for diesel or petrol.
4: इसका सबसे बड़ा benefit होगा कि इस technology को अब और यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रक इन कार्स इन इट कैन बी यूज इन लार्ज माइनिंग ट्रक्स माइनिंग इक्विपमेंट यूज इन फेंस ऑल्सो बेसिकली मल्टीपल सेक्टर विदाउट डिपेंडिंग एनीबॉडी।
3: फ्रॉम मिस्टर मोदी विल विजिट जालंधर इन वेयर ही विल इनॉग्रेट स्टोन ऑफ रेल एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स 5,400 crore rupees. Our correspondent reports that these projects are aimed at strengthening connectivity, improving convenience, and accelerating economic development in the region. The Directorate General of Maritime Administration has directed ship owners,

0: World number 10 Sindhu will now face China's world number 4 Chen Yufei in the semi-finals tomorrow. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi flags off India's first hydrogen train in Jind, Haryana, also lays foundation stone and dedicates various development projects worth over 14,000 crore rupees. DGMA directs ship owners to avoid deploying Indian seafarers undertaking voyages through Strait of Hormuz. European Union expresses serious concern over human rights situation in Pakistan, asks Islamabad to comply with international commitments to access trade benefits. IMD forecasts heavy rainfall over parts of Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya and Odisha today. And in badminton, Indian ace shuttler PV Sindhu enters semi-finals of Japan Open in Tokyo. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने जहाज मालिकों को हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न करने के निर्देश दिए यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा व्यापारिक लाभ पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करें अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान और भारत की पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने हरियाणा में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी श्री मोदी ने 157 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित किया ये ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 667 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का हिस्सा है इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली और कटरा के बीच यात्रा का समय 14 घंटे से घटकर लगभग 6 घंटे हो जाएगा जबकि दिल्ली अमृतसर की यात्रा का समय लगभग 8 घंटे से घटकर 4 घंटे हो जाएगा इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारतीय रेलवे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं उन्होंने कहा कि हरियाणा ने हाल के वर्षों में विकास के एक नए चरण को देखा है और प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है
2: दो नए मेडिकल कॉलेज भी हरियाणा की सेवा के लिए समर्पित है भिवानी में पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज और नारनौल में महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज और राव तुलाराम अस्पताल इससे हरियाणा की स्वास्थ्य सेवा और सशक्त होगी साथ ही इस यहाँ के नौजवानों के लिए डॉक्टर और अन्य मेडिकल प्रोफेशनल्स बनने के नए रास्ते भी बनेंगे
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि जींद भाजपा और एनडीए के सुशासन मॉडल का प्रतीक बनकर उभर रहा है श्री मोदी ने कहा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ ने जींद को भारत के इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाया है
2: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है आज जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन के शुभारंभ को देश की तकनीकी प्रगति में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया श्री वैष्णव ने कहा कि ये उपलब्धि नरेंद्र मोदी सरकार के व्यापक रेलवे आधुनिकीकरण अभियान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि स्वदेशी हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के विकास के लिए दृढ़ राष्ट्र संकल्प का परिणाम है।
3: जींद में हाइड्रोजन बनाने का प्लांट लगाया गया है, उस हाइड्रोजन से बिजली बनती

0: है और उस बिजली से ट्रेन चलती है। कोई धुआं नहीं, कोई पेट्रोल या डीजल की रिक्वायरमेंट नहीं, एकदम साफ स्वच्छ और सिर्फ निकलता है पानी की बूंदे। मैं इस बड़ी उपलब्धि के लिए भारत के नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारत के इंजीनियर्स की टेक्निकल क्षमता को सल्यूट करता हूँ।
1: भारत में डिजाइन और एकीकृत की गई इस ट्रेन को स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। ये उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। जींद सोनीपत खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की परिचालन गति और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन गति के साथ ये ट्रेन न केवल सुरक्षित है बल्कि 89 किलोमीटर के इस खंड पर तेज भी है। एक रिपोर्ट।
2: हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन की शुरुआत होने के साथ ही भारत अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। इस समय दुनिया में अभी ज्यादातर हाइड्रोजन ट्रेनें सिर्फ 2 या 3 डिब्बों की होती है और इन्हें छोटी दूरी की क्षेत्रीय मार्गों पर चलाया जाता है। इसके विपरीत भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से
1: भारत में डिजाइन और एकीकृत की गई इस ट्रेन को स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। ये उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। जींद सोनीपत खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की परिचालन गति और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन गति के साथ ही ट्रेन न केवल सुरक्षित है बल्कि 89 किलोमीटर के इस खंड पर तेज भी है। एक रिपोर्ट।
2: हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन की शुरुआत होने के साथ ही भारत अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। इस समय दुनिया में अभी ज्यादातर हाइड्रोजन ट्रेनें सिर्फ 2 या 3 डिब्बों की होती है और इन्हें छोटी दूरी की क्षेत्रीय मार्गों पर चलाया जाता है। इसके विपरीत भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली इस 10 डिब्बों की ट्रेन तैयार की है जिसमें करीब 2600 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेनों को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। जिंद से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए दीपेंद्र कुमार।
1: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पूर्व कार्यकारी निदेशक और नॉर्वे के पूर्व पर्यावरण मंत्री एरिक सोलहिम ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी के शुभारंभ का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोलहिम ने इसे भारत के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय डीजीएमए ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है।
3: यह परामर्श खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी किया गया है। महानिदेशालय का कहना है कि इन घटनाओं से संघर्ष प्रभावित क्षेत्र में कार्यरत नाविकों और व्यापारिक जहाजों के लिए जोखिम काफी बढ़ गया है। समुद्री प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण के साथ साथ भारतीय जहाजों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपातकालीन स्थिति में महानिदेशालय ने सभी नाविकों और जहाजों से महानिदेशालय संचार केंद्र या भारतीय नौसेना के सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र से तत्काल संपर्क करने की सलाह दी है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाछ के सीमा चौक के स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 18वीं बटालियन से मिलेंगे और प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: केंद्रीय गृह मंत्री सिलीगुड़ी स्थित उत्तर कन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकों का अध्यक्षता करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक विषय, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन तथा जन्म और मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। शाम को वह कलकत्ता के लिए रवाना होंगे। रविवार श्री शाह पश्चिम बंगाल के कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा वह कलकत्ता में राष्ट्रीय पुस्तकालय में नवनिर्मित वर्ल्ड म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। बाद में वह अमूल बंगाल डायरी का आधारशिला रखेंगे। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने इस रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित करने का कार्यक्रम है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली में संपन्न हुआ।

0: इस सम्मेलन में वस्त्र निर्माण, उनकी आदान प्रदान, नवाचार और निवेश के लिए एक प्रमुख वैश्विक गंतव्य के रूप में देश की स्थिति को और मजबूत किया गया है। चार दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत करना, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना तथा संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को एक मंच पर प्रदर्शित करना था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जुलाई से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगी। ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की इन देशों की पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये यात्रा इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पूर्वी यूरोप क्षेत्र के साथ सहयोग को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति मुर्मू 20 जुलाई को मोल्दोवा पहुंचेंगी, जहां वे राष्ट्रपति माया सैंडू से द्विपक्षीय वार्ता के अलावा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से मुलाकात कर व्यापार मंच को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति 21 जुलाई को उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी, जहां वे राष्ट्रपति गोर्डोना सिल्जनवोस्का दावकोवा, क्रिस्टिजन मिकोस्की और विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति उत्तरी मैसेडोनिया की संसद और भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू 23 जुलाई से 2 दिवसीय रोमानिया यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे राष्ट्रपति निकोसोर डैंस सहित वहां के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। संघ ने पाकिस्तान से कहा है कि व्यापारिक लाभ पाने के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करना होगा। संघ ने कहा है कि जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस के अंतर्गत पाकिस्तान को व्यापार लाभ 2027 से संशोधित GSP ढांचे के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुपालन पर निर्भर करेगी। ये टिप्पणियां यूरोपीय आयोग और विदेश मामलों तथा सुरक्षा नीति के लिए यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि द्वारा तैयार की गई 2023-2025 अवधि की नवीनतम संयुक्त निगरानी रिपोर्ट में की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अब भी भेदभाव, व्यक्तिगत हमलों, भीड़ हिंसा और पूजा स्थलों को नुकसान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। इसमें पाकिस्तान की संघीय सरकार से पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को अस्थायी प्रांतीय दर्जा और संवैधानिक तथा राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। दोनों पक्षों के समर्थन से पारित ये प्रस्ताव कल सत्र के दौरान सांसद जलाल अली शाह ने पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर अमेरिकी चुनावों में हस्तक्षेप करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस से राष्ट्रीय टेलीविजन पर अपने संबोधन में चुनाव सुरक्षा से संबंधित खुफिया रिकॉर्ड को तत्काल सार्वजनिक करने की घोषणा की। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 771 अंक बढ़कर 77,957 पर, जबकि निफ्टी 195 अंक की बढ़त के साथ 24,268 पर कारोबार कर रहा था। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और ओडिशा के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। क्वार्टर फाइनल मैच शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला चीन की विश्व नंबर 4 चेन युफेई से होगा। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पड़ाव पर पहुंच गई। भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के भव्य रथ ग्रैंड रोड पर अपनी औपचारिक यात्रा पूरी करते हुए श्री गुंडीचा मंदिर के निकट स्थित पवित्र स्थल शारदाबली पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने जहाज मालिकों को हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले

0: सरहदों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न करने के निर्देश दिए। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, व्यापारिक लाभ पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान और भारत की पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି 308.6 meter ତଥା 972 kHz ଯୋଗେ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ, ଶୁଣିପାରିବେ ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ ପରେ।
2: ବନ୍ୟା ହେଉ ବା ମହାବାତ୍ୟା, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ
3: ଗାଁରୁ ସହର ଯାଏ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ
2: ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ,
3: ଜୁଆଙ୍ଗ ଓ ସାନ୍ତାଳଙ୍କ ଠାରୁ ବଣ୍ଡା ଏବଂ କୋୟାଙ୍କ ଯାଏ, ସବୁରି ଭାଷାରେ
2: କେବଳ ଆକାଶବାଣୀ।

चलित शिक्षाबर्ष पई राज्यर उच्च माध्यमिक विद्यालय गुड़ी करे प्रथम पर्याय नामलेखा शेष होईछि। एही पर्याय रे 382,835 जण नाम लेखाइछन्ति। आसंता 23 तारिख रे नामलेखा पई द्वितीय मेधा तालिका प्रकाश पाइबो। राज्यर प्रथम और अष्टम श्रेणी विद्यालय पाठ्यपुस्तक त्रुटि मामलें आज ओसेपाटा क्राइमब्रांच पक्षर् तदंत जारी रही। डीएसपी नरेन्द्र बेहरा समेत पांचजिया टीम एमिल अच्छा। पूर्व क्राइमब्रांच पक्षर् राज्य शिक्षक शिक्षा निर्देशालय और शिक्षा गवेषणा प्रशिक्षण परिषद तदंत कर पाठ्यपुस्तक त्रुटि घटन एससीईआरटी पूर्वतन निर्देशक मनोज पाढ़ी क्राइमब्रांच पक्ष गिरफ्त कर। पूर्वरु एही घटना रे 3 जण सहकारी निर्देशकंकु निलंबन एवं 6 जण सहकारी निर्देशकंक उपरे श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जायछि। गत किछि दिन तळे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी त्रुटि संपर्कित समग्र प्रक्रियार अपराधिक तदंत आरंभ करबा नै निर्देश दैथिले। भद्रक महिला महाविद्यालय रे 7 दिन धरि चालितिबा आत्मरक्षा प्रशिक्षण कौशल शिविर आज उद्यापित होइ जायछि। शिक्षाविद डॉक्टर अभय कुमार दास शिविर रे जोग देई छात्रछात्रींकु आत्मरक्षा प्रशिक्षण नेबा पई परामर्श दैथिले। पाणिपाग उत्तर पश्चिम बंगोपसागर एवं संलग्न उत्तर ओडिशा और पश्चिमबंग उपकूल में सक्रिय लघुचाप प्रभाव में राज्य विभिन्न स्थान में वर्षा लागि रही। आंचलिक पाणिपाग विज्ञान केन्द्र सूचना अनुसार आसंता 24 घंटा मध्य 26 जिले में बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा होवार संभावना रही। अति प्रबल वर्षा नहीं 9 जिला भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणिपाग विज्ञान केन्द्र पक्ष सतर्क सूचना जारी कर। गत 24 घंटा मध्य केन्दुझर जिलार हाटडीहर सर्वाधिक 210 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड करा जाइछि। चलित मास पहिलारु आज सुद्धा राज्य में 17% अधिक वर्षा होइतिबा नै जल संपद विभाग सर्वोच्च जंत्री दिलीप राउत कहिछन्ति। हीराकुद जलभंडारर जलस्तर मध्यान 12 सुद्धा 609.79 फुट रही। जलभंडार मध्य 28,644 घनफुट जल प्रवेश कर 28,644 घनफुट जल निष्कासित होउछि। संवाद शेष होवा पूर्वरु मुख्य संवाद पुणि थरे। शरधा बाली रे पहुंचिला तालध्वज दर्प दलन श्रीगुंडीचा अभिमुखे महाप्रभु नंदीघोष रथ। देशर प्रथम हाइड्रोजन चालित ट्रेनर शुभारंभ कले प्रधानमंत्री। अपराह्नरे ओडिशार 7 अमृत भारत स्टेशन करिवे उद्घाटन। विश्वरे न्याय उत्तरदायित्व मानवाधिकार प्रसारर वार्ता नहीं आज पालन कराउछि अंतर्जातीय न्याय दिवस। एवं लघुचाप प्रभाव में राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा संभावना चलित मास पहिलारु आज सुद्धा 17% अधिक वर्षा रेकर्ड। आंचलिक संवाद बर्तमान परवर्त आंचलिक संवाद शुणिपारे सन्ध्या 6:45 मिनिट्रे। नमस्कार।

0: पवित्र रथयात्रा अवसर रे विद्युत सुरक्षा नियमावली अवलंबन करंतु एवं सुरक्षित रहंतु।
1: ओडिसार विभिन्न स्थान रे अनुष्ठित हेउथिबा पवित्र रथयात्रार आयोजक मानंकु विद्युत सुरक्षा नियमावली पालन करबाकु अनुरोध करा जाउछि।
0: रथ को निर्धारित मार्ग रे सुरक्षित भाबरे नेबा पई स्थानीय विद्युत वितरण कार्यालय रे लिखित भाबे जणंतु।
1: पूजा पेंडल, यात्रा स्थली, होटल, दुकान बजार अधिक जनसमागम स्थान रे वैद्युतिक उपकरणर सुरक्षा जांच पई स्थानीय विद्युत निरीक्षकंकु लिखित भावे अवगत करंतु। शक्ति विभाग ओडिशा सरकारंक द्वारा जनहित जारी।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास से लोगों के जीवन में बदलाव आया है, लेकिन इसका लाभ शहर तक ही सीमित नहीं है बल्कि हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहां देश के कई बड़े संस्थान मौजूद हैं।
1: चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहां एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस और रिसर्च से जुड़े बड़े संस्थान एक साथ मौजूद है। बहुत कम शहरों के पास ऐसा सामर्थ्य होता है। आने वाले समय में यही संस्थान नई टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, स्टार्टअप्स और इनोवेशन के बड़े केंद्र बन सकते हैं। आज एजुकेशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी इस यात्रा को नई गति दे रही।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने हरियाणा में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने 157 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित किया। ये ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 667 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारतीय रेलवे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने हाल के वर्षों में विकास के एक नए चरण को देखा है और प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि 2 नए मेडिकल कॉलेज भी बनकर तैयार हैं।
1: 2 नए मेडिकल कॉलेज भी हरियाणा की सेवा के लिए समर्पित है। भिवानी में पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज और नारनौल में महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज और राव तुलाराम अस्पताल। इससे हरियाणा की स्वास्थ्य सेवा और सशक्त होगी। साथ ही इस यहाँ के नौजवानों के लिए डॉक्टर और अन्य मेडिकल प्रोफेशनल्स बनने के नए रास्ते भी बनेंगे।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन के शुभारंभ को देश की तकनीकी प्रगति में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। भारत में डिजाइन और एकीकृत की गई इस ट्रेन को स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय डीजीएमए ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। ये परामर्श खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी किया गया है। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने इस रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाछ के सीमा चौक स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 18वीं बटालियन से मिलेंगे और प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं।

सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और ओडिशा के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते

0: हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी ने। लिखते हैं,
1: जीवन में हमेशा ऐसी संगति चुननी चाहिए जो हमें ऊंचाइयों की ओर ले जाए और हमारी सोच को सकारात्मक बनाए। अच्छे लोग वही हैं जिनकी उपस्थिति से हमारे भीतर का श्रेष्ठ गुण प्रकट हो सकता है और जो हमें हर दिन और बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल का।
1: शंकर प्रसाद खूंटे जी लिखते हैं, मैं दृष्टिबाधित हूं और बीएड स्पेशल एजुकेशन की पढ़ाई कर रहा हूं। मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद शंकर प्रसाद खूंटे जी। और अगला संदेश हमें मिला है गाँव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी जी का।
1: गांव खिंदासा तहसील कोरायत जिला बीकानेर राजस्थान से कानाराम चौहान जी।
0: और शोभा राणे जी लिखते हैं ठाणे महाराष्ट्र से।
1: गांव ढोडरी घोटिया जिला मोहला मानपुर छत्तीसगढ़ से महेश कुमार निषाद, रम्मा रानी निषाद, निखिल कुमार निषाद और नैतिक कुमार निषाद।
0: आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर संदेशों के लिए। तो प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। श्रोताओं एक बार फिर से हम प्रस्तुत हैं नई और रोचक जानकारियों के साथ।
1: श्रोताओं हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के क्रमिक उद्भव और विकास की। आज हम चर्चा करेंगे मुद्रण से आधुनिक पुस्तकों तक की यात्रा पर। श्रोताओं जिस आधुनिक पुस्तक को हम हाथ में लेकर आज पढ़ते हैं उसके पीछे लगभग 600 वर्षों का इतिहास है। हमने अब तक सुना कि मुद्रण कला के आने से पहले पुस्तकें हाथों से लिखी जाती थी। भारत में ताड़पत्र, भोजपत्र और बाद में कागज पर ग्रंथ और साहित्य लिखा जाता था।
0: जी हाँ श्रोताओं, यूरोप में चर्म पत्रों और कागज पर लिखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे मानव सभ्यता मुद्रण की ओर बढ़ने लगी। चीन में लगभग 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच लकड़ी के ब्लॉक्स बनाए जा चुके थे जिन पर अक्षरों को उकेर कर और उसमें स्याही लगाकर पूरे पृष्ठ की छपाई की जाती थी।
1: ये तकनीक हस्तलिखित तकनीक से कहीं अधिक तेज और सुविधापूर्ण थी। 11वीं शताब्दी में चीन में धातुओं या लकड़ी से अलग अलग अक्षरों को बनाया जाने लगा और उनसे शब्द और वाक्य बनाए जाने लगे। ये आधुनिक मुद्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
0: जी श्रोताओं, 15वीं शताब्दी को मुद्रण की दिशा में एक मील का पत्थर माना जाता है जब जर्मनी के ग्यूटेनबर्ग ने 1450 में छापने की मशीन का आविष्कार किया।
1: जी,
0: इसके द्वारा एक ही पुस्तक की सैकड़ों प्रतियां तैयार हो सकती थीं।
1: गुटेनबर्ग ने एक धातु का फार्मा बनाया जिसमें चल अक्षर थे। चल अक्षरों का अर्थ है उनके फार्मे में अक्षरों को वाक्यों के रूप में सजाया जाता था और उनमें स्याही पोतकर कागज पर छापा जाता था। छपाई के बाद उन्हीं धातु के अक्षरों को फिर से नए वाक्यों के अनुसार संयोजित कर लिया जाता था।
0: जी श्रोताओं, गुटेनबर्ग की मशीन से छपने वाली पहली पुस्तक बाइबल थी जिसे गुटेनबर्ग बाइबल कहा जाता है। यही तकनीक आधुनिक मुद्रण कला की नींव बनी।
1: इसके बाद हम सभी जानते हैं कि मानव सभ्यता ने एक शानदार मुद्रण तकनीक को देखा। अब डिजिटल मुद्रण का युग है जिससे कुछ ही समय में हजारों लाखों पृष्ठ छापे जा सकते हैं। इसके बाद आया ई बुक का जमाना जिसमें हम रह रहे हैं। पहले पुस्तकों को रखने के लिए विशाल पुस्तकालय हुआ करते थे, लेकिन अब हजारों पुस्तकें एक छोटे से डिवाइस में ही रखी जा सकती हैं।
0: जी तो श्रोताओं, कहा जा सकता है कि मिट्टी की पुस्तकों से पेपिरस तक, भोज और ताड़ पत्रों से होते हुए चर्म पत्रों तक, वहां से गुटेनबर्ग के छापे खाने और फिर डिजिटल पुस्तकों तक की पुस्तकों की यात्रा सच में अनूठी है।
1: जी बिल्कुल, सच में अनूठी है। तो श्रोताओं कैसी लगी आपको ये जानकारी जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न है,
0: गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया?
0: आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: फेसबुक, इंस्टा, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।
1: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से बताया गया है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किन भौगोलिक कारणों से हुई और इसे मूड़दार पर्वत श्रृंखला क्यों कहते हैं।
2: साथियों नमस्कार, आइए करते हैं शुरुआत हिंदी के प्रख्यात कवि
3: विनोद कुमार शुक्ल जी की सुंदर कविता से।
2: उच्च हिमालय पर्वतराज, खड़ा पहनकर हिम का ताज,
3: ऊंचा मस्त

0: तक रख दिन रात आसमान से करता बात।
1: हिमालय हमारा गौरव है, ऋषि मुनियों की तप भूमि होने के कारण इसे देव भूमि भी कहा जाता है। यहाँ अनेक मठों और मंदिरों का निर्माण हुआ है। हिमालय वास्तव में भारत की आत्मा और गौरव का प्रतीक है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये जिज्ञासा उठी कि आखिर कैसे बना हिमालय?
0: तो आइए सुनते हैं एक नाटक,
1: कैसे बना हिमालय।
0: आज रिद्धि,
1: नव्या
0: और रिदित
1: सब बहुत खुश है
0: क्योंकि उनका परिवार
1: हिमालय क्षेत्र के भ्रमण पर दार्जिलिंग जो जा रहा है।
2: चलो चलो, दार्जिलिंग चलना है, बड़ा मजा आएगा, मैं तो खूब एंजॉय करूंगी।
3: मैंने सुना है बहुत सुंदर जगह है।
2: मुझे बहुत इच्छा थी इस टूर पर जाने की।
3: कितना अच्छा लगेगा जब हम हिमालय की गोद में कुछ दिन बिताएंगे,
2: पहाड़ों पर भी चढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे अरे जल्दी से चलो, पैकिंग भी तो करनी है।
3: बहुत मजा आएगा।
0: जहाँ वे रुके हुए थे वहाँ से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी
1: माउंट एवरेस्ट साफ साफ दिखाई पड़ रही थी।
0: वे सुंदर दृश्य का आनंद उठा ही रहे थे
1: कि उनके कमरे के बगल में ठहरे हुए
0: डॉक्टर आदित्य भी वहाँ गए।
1: बातचीत होने लगी। जब सबने अपने परिचय दे ही दिया तो उन्हें पता चला कि डॉक्टर आदित्य जाने माने भूगर्भ शास्त्री है और अपने शोध कार्य के लिए यहाँ आए हुए हैं। चर्चा होने लगी। बस तो रिद्धि ने प्रश्न पूछ ही लिया।
2: सर, हमें कक्षा में टीचर बता रही थी कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, क्या पर्वतों का भी निर्माण होता है?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। भाई ये सच है कि पर्वतों का भी निर्माण होता है। तो सुनो, बहुत समय पहले की बात है, करीब 20 करोड़ साल पहले की बात है।
2: क्या 20 करोड़ साल?
0: तब हमारी धरती नई नई थी। तब हमारे महाद्वीप आज की तरह अलग अलग नहीं थे। सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी।
2: सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी मतलब?
0: नव्या, अब भाई थोड़ा सा धीरज तो रखो। अब बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बताओ कि हमारी पृथ्वी पर कितने महादेश हैं? रिदित तुम बताओ।
3: ये तो बहुत आसान है। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका।
2: रुको, मैं बताती हूँ।
0: तुम बताओ।
2: अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया भी तो है। ऑस्ट्रेलिया को ओशेनिया भी तो कहते हैं।
0: बिल्कुल सही रिद्धि। उस समय हमारी पृथ्वी पर एक शांत और विशाल महासागर था और महासागर का नाम था टैथिस महासागर। क्या नाम था?
2: टैथिस महासागर।
0: वाह,
2: ये जानना तो बहुत ही रोचक है। फिर क्या हुआ सर?
0: फिर हुआ ये कि पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण ये जुड़े हुए भूखंड धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होकर खिसकने लगे।
2: अलग होकर खिसकने लगे?
0: अरे एक दूसरे से दूर होने लगे, कुछ एक दूसरे के पास भी आने लगे।
2: सर फिर तो वे बहुत तेज गति से खिसक रहे होंगे।
0: अरे नहीं नव्या, हर साल लगभग 3-4 सेंटीमीटर बस।
3: लेकिन सर हम तो बात कर रहे थे कि हिमालय कैसे बना।
2: सर ये बताइए ना, हिमालय कैसे बना?
0: बेटा मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। अच्छा अब आगे सुनो। उन दिनों हमारा भारत गोंडवाना नामक एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था, जहाँ उसका पड़ोसी अफ्रीका था। हजारों साल इसी तरह से निकल गए। समय के साथ साथ भूमि दो हिस्सों में बट गई। दोनों हिस्से एक दूसरे से दूर हो गए। वे दो हिस्से थे, लॉरेशिया यानी यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना यानी इंडियन प्लेट।
3: यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट?
2: सर आप तो टैथिस सागर के बारे में भी तो बता रहे थे।
0: अरे वाह, तुमने तो मुझे बहुत अच्छा याद दिलाया
2: जी।
0: देखो, विशाल और शांत महासागर ये एक प्राचीन महासागर था जो आज के भूमध्य सागर, अरब सागर और हिमालयी क्षेत्र के बीच फैला हुआ माना जाता है। इसी सागर की

0: धड़ी भूमि की आंतरिक चाल के कारण गोंडवाना और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी।
1: फिर क्या हुआ सर, जब प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी?
0: बेटा उसके बाद गोंडवाना लैंड यानी भारतीय हिस्सा टैथित सागर एक दिन यूरेशियन प्लेट के करीब पहुंच गया। इस यात्रा में उसे लाखों साल लगे, लेकिन एक दिन अचानक एक जोरदार आवाज आई। गोंडवाना यानी इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा गईं।
2: अच्छा?
0: हाँ बच्चों, टक्कर इतनी जोरदार थी कि बीच की धरती की परतें मुड़कर ऊंची हो गई।
2: सर मैं कुछ बताऊँ इसके बारे में?
0: हाँ बेटा क्यों नहीं।
2: ठीक, वैसे ही जैसे यदि किसी कालीन या चटाई को दोनों तरफ से धक्का दिया जाए तो बीच का हिस्सा उठ जाता है।
0: बहुत अच्छे। और इसी प्रक्रिया में तुम जानते हो आगे क्या हुआ? इसी प्रक्रिया में जन्मा हिमालय। तुम्हें पता है आज भी हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इंडियन या गोंडवाना प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट की ओर बहुत धीमी गति से खिसकती जा रही है। दोनों ओर से दबाव बढ़ने के कारण इस हिस्से यानी हिमालयी क्षेत्र की ऊंचाई बढ़ती जा रही है, इसीलिए तो हिमालय को मोड़दार पर्वत कहते हैं।
1: अब समझ आया सर, इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ जाती होगी?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल है। हिमालय में अब भी प्रतिदिन बढ़ने की क्षमता है, इसके अलग अलग अनुमान हैं। आम तौर पर कह सकते हैं कि साल भर में लगभग 5 मिलीमीटर और एक सहस्राब्दी यानी 1000 वर्षों में लगभग 5 मीटर।
2: सर एक खास बात तो हम भूल ही गए, टैथित सागर का क्या हुआ?
0: भाई यही तो सबसे रोचक बात है। सच ये है कि टैथित सागर का क्षेत्र ही हिमालय पर्वत बन गया।
2: यानी क्या हम कह सकते हैं कि जहाँ कभी महासागर था वहाँ आज हमारा हिमालय है?
0: हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं।
1: लेकिन इसके क्या प्रमाण हैं?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी आपने। भूविज्ञानियों को हिमालय की ऊंचाइयों में आज भी समुद्री जीवों के जीवाश्म, शंख, सीप, समुद्री घोंघे और कोरल की चट्टाने मिली है। ये सभी जीव समुद्र में ही पाए जाते हैं। इन खोजों से सिद्ध हो जाता है कि कभी न कभी वहाँ समुद्र रहा जरूर होगा। वहाँ की बहुत सी चट्टाने भी ऐसी हैं जो समुद्र में ही पाई जाती हैं, जैसे चूना पत्थर और शेल आदि। ऐसी चट्टाने समुद्र की तलहटी में ही मिलती हैं।
1: अच्छा, तो ये बात है।
0: बिल्कुल। एक और खास बात तुम्हें बता दूं, हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, ये बहुत विस्तृत और विशाल पर्वत श्रेणी है। इसकी लगभग 10 चोटियां हैं जो 8000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। वैसे यदि सभी चोटियों की बात करें तो अलग अलग ऊंचाइयों की कुल 15000 चोटियां हैं, जिनमें सबसे ऊंचा है
3: माउंट एवरेस्ट।
0: सही जवाब। अच्छा बच्चों एक चीज और बताता हूँ, तिब्बती लोग इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है जगत जननी, और पर्वत की उसी रूप में पूजा भी करते हैं। अच्छा बच्चों, नेपाल के निवासी इसे सागर माथा कहते हैं, जिसका अर्थ है आकाश की देवी।
1: सर मुझे आज की बातचीत से एक बात और समझ में आई।
0: भला वो क्या?
1: वो ये कि दबाव कितना भी पड़े हिमालय की तरह ऊंचा उठना मत छोड़ो।
0: बिल्कुल सही बात।
4: तो साथियों अभी आपने सुनी हिमालय के निर्माण की रोचक कहानी, कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब आपके लिए कुछ प्रश्न, पता लगाइए कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। दूसरा प्रश्न है, हिमालय किन दो प्लेटों के टकराने से बना। कार्यक्रम में आपने

0: ना कि हिमालय की ऊंचाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस तथ्य से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस पर एक लघु निबंध या कविता लिखिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैसे बना हिमालय। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनियांकन मंजू कुमारी, बाल कलाकार रिद्धि नव्या और रिदित, कलाकार दलजीत सचदेवा और प्रीति मोहन, नाट्य आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सुरेंद्र कुमार। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।

0: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है स्वामी की दादी।
1: इस कार्यक्रम में स्वामीनाथन नामक एक बच्चे की सुंदर कहानी है, जिसमें उसके और उसकी दादी के बीच प्रेम और स्नेह के संबंध को बताते हुए संदेश दिया गया है कि बच्चों को अपने बड़ों और बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। कार्यक्रम मुख्य रूप से पारिवारिक मूल्यों के महत्व पर बल देता है।
2: बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थीं। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था।
3: आजा, आजा, आजा।

0: बड़ी प्रसन्नता से भरकर वो बोला,
1: ओ दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है।
2: अच्छा?
0: उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई।
1: तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है,
0: स्वामीनाथन बोला।
2: सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए,
0: दादी ने पूछा।
1: उसके पिता पुलिस अधीक्षक

0: स्वामीनाथन बोला,
1: सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए?
0: दादी ने पूछा।
2: उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं, वो यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं।
1: अच्छा।
0: दादी काफी प्रभावित हुई।
1: उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा।
0: उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गईं, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गडमड करती हुई।
2: बस काफी है दादी,
0: उसने रूखे स्वर में कहा।
2: मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं?
1: सारे नंबर मिलते होंगे, है ना?
0: दादी ने पूछा।
2: अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं।
1: चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे, और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वो मेडल अब कहाँ है? मैंने वो तुम्हारी बुआ को दिया, और उस बेवकूफ ने उसे गलवा कर 4 चूड़ियां बनवा ली, और वो भी इतनी मामूली सी चूड़ियां कि मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं। और
2: अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियां सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती?
1: बोलो
2: दादी। जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था।
1: सच? बड़ा बहादुर लड़का है।
2: तुम ये बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो?
1: अरे नहीं नहीं,
2: तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा।
0: स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की।
2: राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे।
1: अच्छा।
2: राजम उनके साथ था, अचानक 2 शेर उन पर झपटे, और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई?
0: उसने कहानी खत्म होने पर पूछा।
1: नहीं नहीं बेटा,

0: सुन रही हूँ।
1: अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे?
0: दो शेर राजम पर झपटे थे।
2: दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया।
1: मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में ना जाने क्या क्या उल जलूल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती।
0: अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत प्यारा लड़का है।
2: दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उन्होंने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ।
1: दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है।
0: मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ।
2: दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा,
1: जो भी उसे झूठा कहेगा वो उसे गोली मार देगा।
3: अच्छा।
2: दादी ने इसका समर्थन किया और हरीशचंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा।
0: तो हरीशचंद्र ने अपनी पत्नी और बच्चे को इस तरह से खो दिया, लेकिन बाद में
2: दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वो भी सो गई।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम स्वामी की दादी, और अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आपसे आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु, चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: ଶେଷ ହେଲା ପ୍ରାୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉମଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀ ପାଟଣା କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଯୁବବାଣୀର ସମ୍ଭାବନା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରିସରକୁ ଯିବା ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ ପରେ।
4: କମ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ ଫାଇଦା, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ରେ ବଢ଼ିଆ।
5: अडोना लिंक्स उपरे क्लिक करंतु नाही। आरबीआई कहे
6: सचेतन होंतु, सतर्क रहंतु।
7: कौन भाई एते दिन परे?
8: हां भाई, अरे सुन, दाढ़ी काटिबो को केते लागिबो?
7: अरे सेही हमरो 60 टका।
8: अरे भाई, एमे मात्र मो पखरे 30 टका कैश अछि।
7: तो देखो, दुईटा उपाय अछि। प्रथम, आधा दाढ़ी काटि परिबो।
8: आउ अन्यटा?
7: अरे डिजिटल पेमेंट करो यूपीआई द्वारा।
8: ए देखो भाई, यूपीआई तो बंचे देला।
7: गोटे काम करो, फेशियल भी करे नियो, डिजिटल पेमेंट करे दबो।
8: भारत करे डिजिटल देयो प्रदान,
9: सहज अटे प्रतिदिन नेण देण।
10: दस लाख रे लॉटरी मते, वाओ,
4: हसला। नकली ऑफर्स प्रति सावधान।
5: आरबीआई कहे
6: सचेतन होंतु, सतर्क रहंतु।
7: ओहो, नौरिया रो लव स्टोरी रो मैच हला आरंभ। उभय खाइले इटालियन क्विजिन, वेटर फोपड़िला स्पिन, 4000 रो बिल आसिला। रोहन रो हृदय जोर रे धक धक हला, जाई थिला भूली से नेबा को निजरो वॉलेट। रिया हे गला कूल।

बॉटनी गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय अमृत विहार कैंपस संबलपुर योग्यता आवेदन पत्र नमूना एवं अन्यान्य विवरणी विश्वविद्यालय वेबसाइट www.amuniversity.ac.in परिदर्शन करंतु। तेबे श्रोता बंधु एहा थिला आजिर संभावना कार्यक्रम। आशा करुछि आपण मानंकु आजिर कार्यक्रमटी निश्चित भावरे भल लागिथिबो। जदि आपणंकु आजिर कार्यक्रमटी भल लागिछि मतामतर चिठीटी देबाकु जम्मारु भूलिबेनि। आमकु मतामत जणाइबार ठिकणाटी हेला साप्ताहिकी जुबवाणी विभाग मार्फत केन्द्र निर्देशक आकाशवाणी भवानीपाटणा जिल्ला कळाहांडी पिन 7660001। आपण माने आमकु व्हाट्सएप जरियारी मध्य आपणंक सुचिंतित मतामत सबु पठाई परिबे। नंबरटी लिखि रखंतु, नंबरटी हेला 8895994143। मु पुणी थरे कहि रखुची 8895994143। आजिर संभावना कार्यक्रमर उपस्थापनारे मु थिली आपणंक मित अनिंदिता रथ। रहिली नमस्कार।

0: मुनि ना सहो।
1: श्री क्षेत्र कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारम्भ किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य कनेक्टिविटी को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधा में सुधार करना और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देना है। उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जलंधर कैंट सहित 75 पुनः निर्मित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार भारत के प्रत्येक नागरिक की सेवा को प्राथमिकता देती है, उनके जीवन को सुगम बनाती है और उन्हें प्रगति के नए अवसर प्रदान करती है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
2: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
1: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी

0: ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र और 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज और सेक्टर 46 के सरकारी कॉलेज में छात्रावास भवनों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुँच रहा है। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसाराव पेटा में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री वर्ष 2014 से ही हर गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं, ताकि किसानों, कृषि और हथकरघा श्रमिकों तथा अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को संस्थागत बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर राष्ट्रीय महिला आयोग का 2 दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। संसद के मॉनसून सत्र से पहले मंत्रियों के समूह की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, के राम मोहन नायडू और किरेन रिजिजू बैठक में उपस्थित थे। इस दौरान आगामी संसदीय सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 965 अंक बढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। निफ्टी 262 अंक की बढ़त के साथ 24,334 पर पहुंच गया। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारत की टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में खेली जाएगी। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi today laid the foundation stone and inaugurated multiple development projects in Jalandhar, Punjab, worth over 5,470 crore rupees. The projects worth over 5,470 crore rupees aimed at strengthening connectivity, improving passenger convenience and accelerating economic development in the region. The Prime Minister inaugurated 75 redeveloped railway stations, including Jalandhar Gant, under the Amrit Bharat Station Scheme. Addressing a public gathering in Jalandhar, Prime Minister Modi said, "The NDA government at the centre prioritises serving every citizen of India, making their lives easier and providing them with new opportunities for progress." He said it is their endeavour to ensure that every family, whether poor or middle class, receives the best possible facilities, and this spirit of Nagrik Deva Bhava is reflected in government's work.
2: साथियों, विकास कार्यों को गति देते हुए अब यहाँ जालंधर से कई नई से रेल सेवाएं शुरू की गई है। आज अमृतसर से काशी के बीच रेल सेवा भी शुरू हुई।

0: पीवी सिंधुः टोक्यो नगरे जापान ओपन क्रीडायाः उपांत्य चक्रं प्रविष्टवती। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अद्य हरियाणा राज्यस्य जिन्द सोनीपत नगरयोः मध्ये भारतस्य प्रथमं हाइड्रोजन शक्तियुतं रेलयानं जिन्द रेलस्थानकतः हरितध्वज प्रदर्श्य उद्घाटितम्। यद्धि स्वच्छं तथा सुस्थिरं रेलपरिवहनं प्रति प्रमुखं पदक्षेपम् इति च निर्दिष्टम्। प्रधानमन्त्रिणा राष्ट्रिय राजमार्ग परियोजनया सह 14,000 कोटि रूप्यकाणां विभिन्नानां विकास परियोजनानां शिलान्यासं लोकार्पणञ्च कृतम्। प्रधानमन्त्री 75,000 किलोमीटर परिमितं सुदीर्घं दिल्ली अमृतसर कटरा द्रुतमार्गमपि राष्ट्रार्पितवान्। जनसमूहं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अवदत् यत् भारतीय रेल विभागे विगत द्वादशवर्षेषु महत् परिवर्तनं जातमिति।
1: भविष्य में जब भी हाइड्रोजन

0: शैक्षिकयात्रा भविष्यति। सः अवदत् यत् रोमानिया देशस्य यात्रा त्रिषु दशकेषु भारतीय राष्ट्रपतेः प्रथमा राजकीय यात्रा भविष्यति। भारतस्य ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य अरुणाचल प्रदेशस्य असम राज्यस्य मेघालयस्य ओडिशा राज्यस्य च केषुचित् भागेषु प्रचण्ड वृष्टिः भविष्यति इति पूर्वानुमानं कृतमस्ति। बिहारस्य छत्तीसगढ़स्य पूर्व मध्यप्रदेशस्य पूर्व उत्तरप्रदेशस्य झारखण्ड नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा उत्तराखण्ड राज्यादिभिः समं विदर्भस्य पश्चिमबंगस्य सिक्किम राज्यस्य च केषुचित् भागेषु अपि दिने मध्यमात् प्रबल पर्यन्तं वर्षा भवितुम् अर्हति इति उक्तमस्ति। दिल्ली राज्यस्य मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अद्य नवदेहल्यां पञ्चचत्वारिंशत् नूतनानां आयुष्मान आरोग्य मन्दिराणां उद्घाटनम् अकरोत्। सामाजिक माध्यम प्रसारे मुख्यमंत्री उक्तवती यत् नगरस्य निवासिनः स्वगृहं निकषा एव उत्तम स्वास्थ्य सेवाः प्राप्नुयुरिति संकल्प सिद्धये सर्वकारः प्रतिबद्धः अस्तीति। अद्य दिल्ली नगरे पञ्चदशोत्तर चतुश्शताधिकानि प्रायः आयुष्मान आरोग्य मन्दिराणि प्रचलन्ति। एकादशशततोधिकानि आयुष्मान आरोग्य मन्दिराणि शीघ्रमेव प्राप्तानि भविष्यन्तीत्यपि सा अवोचत्। संसदः प्राविट सत्रात् प्राक् अद्य नवदेहल्यां मन्त्रिमण्डलस्य सभा अभवत्। अस्यां सभायां केन्द्रीय मन्त्री अमित शाहः राजनाथ सिंहः राजीव रंजन सिंहः किंजारापु राममोहन नायडुः किरेन रिजिजुः च उपस्थिताः आसन्। सभायाः समये नेतारः आगामि संसदीय सत्रस्य रणनीतिं परिकल्पितवन्तः। अस्य मासस्य विंशतिः दिनाङ्कादारभ्य आगामि मासस्य त्रयोदश दिनाङ्कपर्यन्तं संसत् प्राविट सत्रं प्रचलिष्यति। प्रियाः श्रोतारः अन्ते क्रीडावार्ताः। बैडमिंटन क्रीडायां द्विवारं ओलंपिक पदक विजेत्री पीवी सिंधु इत्येषा जापान ओपनाख्यायाः क्रीडायाः उपांत्य चक्रे प्रविष्टवती। जापान देशस्य पूर्व विश्व विजेत्री नोजोमी ओकुहारा इत्यस्याः महिला एकलस्य प्रागुपांत्य चक्रीय स्पर्धायाः निराकरण कारणात् परं सिंधुः प्रगतिम् अकरोत्, येन भारतीय क्रीडिकायै वॉक ओवर इति प्राप्तः। जगतः दशमी क्रीडिका पी बी सिंधु इदानीं चीनदेशस्य चतुर्थ्या क्रीडिकया चेन युफे इत्यनया सह श्वः उपान्त्यचक्रे क्रीडिष्यति इति वार्ताः।
1: संस्कृत संवाद लेखर शुणिलु आकाशवाणी दिल्ली रु आकाशवाणी भवानी पटना आदिवासी गीत क्रम प्रचार करुछु टक्रिया कंध गीत परिवेशन करछन्ति राधामणि ओ साथी शुणिबा ए विज्ञापन परे।
2: अच्छा दास बाबू आपण को घरटा 1970 रे तयार हितला राइट हेले ए पर्यंत एते स्ट्रांग केमिति अछि।
3: अरे एटा एकदम सिंपल एवं सेहिथि पई मु सेतेबेले मोर विश्वास रखितली एवं आजि मध्य चेटिनट सिमेंट उपरे
4: शक्ति जहां वर्ष वर्ष नुहे बरम पीढ़ी पाई रही थाए। चेटिनट सिमेंट सुपर ग्रेड सिमेंट 64 वर्ष रो दृढ़ मूल दुआ चेटिनट सिमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: अच्छा दास बाबू आपण को घरटा 1970 रे तयार हितला राइट हेले ए पर्यंत एते स्ट्रांग केमिति अछि।
3: अरे एटा एकदम सिंपल एवं सेहिथि पई मु सेतेबेले मोर विश्वास रखितली एवं आजि मध्य चेटिनट सिमेंट उपरे
4: शक्ति जहां वर्ष वर्ष नुहे बरम पीढ़ी पाई रही थाए। चेटिनट सिमेंट सुपर ग्रेड सिमेंट 64 वर्ष रो दृढ़ मूल दुआ चेटिनट सिमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: अच्छा दास बाबू आपण को घरटा 1970 रे तयार हितला राइट हेले ए पर्यंत एते स्ट्रांग केमिति अछि।
3: अरे एटा एकदम सिंपल एवं सेहिथि पई मु सेतेबेले मोर विश्वास रखितली एवं आजि मध्य चेटिनट सिमेंट उपरे
4: शक्ति जहां वर्ष वर्ष नुहे बरम पीढ़ी पाई रही थाए। चेटिनट सिमेंट सुपर ग्रेड सिमेंट 64 वर्ष रो दृढ़ मूल दुआ चेटिनट सिमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: अच्छा दास बाबू आपण को घरटा 1970 रे तयार हितला राइट हेले ए पर्यंत एते स्ट्रांग केमिति अछि।
3: अरे एटा एकदम सिंपल एवं सेहिथि पई मु सेतेबेले मोर विश्वास रखितली एवं आजि मध्य चेटिनट सिमेंट उपरे
4: शक्ति जहां वर्ष वर्ष नुहे बरम पीढ़ी पाई रही थाए। चेटिनट सिमेंट सुपर ग्रेड सिमेंट 64 वर्ष रो दृढ़ मूल दुआ चेटिनट सिमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: कोरापुट जिल्ला रो कोरापुट रायगडा जयपुर ओ नवरंगपुर सब डिविजन रे आदिवासी कंध संप्रदायर भाई भणी माने बसवास करै आछन्ती। ए माने मुख्यतः चासो उपर ही निर्भर करथन्ती। नवरंगपुर सब डिविजन रो कदळी जबा धनुबंगागुडा तथा अन्यन्य ग्राम रे टेक्रिया कंध माने रही आछन्ती। ए माने परिश्रमी ए मानंकर जीवन मध्य संगीतमय आसंतु शुणिबा धनुबंगागुडा रो टेक्रिया कंध गीत परिवेषण करछन्ती

गति करुथबा जना पडुछि। एक गवेषणात्मक रिपोर्ट अनुजाई मात्राधिक भूतल जल उत्तोलन पृथ्वी उपरे नकारात्मक प्रभाव पकाउछि। जल संकट सृष्टि हेबा सह पृथ्वीर भारसाम्य बिगिडिबारे लागिछि। अतिरिक्त भूतल जल व्यवहार जोगु एहार स्तर ह्रास पाइबा सह पृथ्वीर मेरु अक्ष बा घूर्णन अक्षरे परिवर्तन घटुछि। सीधासळख भाबे एहा जोगु समुद्र स्तर वृद्धि पाइबा सह जलवायु परिवर्तन भळि गंभीर समस्या सृष्टि हेउछि। वैज्ञानिकक आकलन अनुजाई गत किछि दशंधि मध्यरे कृषि शिल्प एवं घरोइ व्यवहार पई विपुल परिमाणर भूतल जल व्यवहार करा जाउछि। एहि व्यवहृत बा अव्यवहृत जल नदी नाळ देइ समुद्ररे मिसिबा जोगु पृथ्वीर ओजन बंटन प्रक्रियारे असंतुलनता सृष्टि हेउछि। फळरे निज अक्षपथरे पृथ्वीर घूर्णन शैली प्रभावित हेउछि। अन्य प्रकारे कहिले मानव समाज पई एहा एक बड चेतावनी। एबेठु सचेतन हेबाकु पडिबो। भूतल जलस्तरें सुधार आणिबा पई दृढ़ पदक्षेप ग्रहण करिबाकु पडिबो। एहार समाधान दिगरे आमकु केतोटी पदक्षेप उपरे गुरुत्व देबार आवश्यकता रहिछि। सेगुडिक हेला वर्षा जल अमल, आर्द्र भूमि ओ पोखरीर संरक्षण, कृषि क्षेत्रर संस्कार, व्यापक वनीकरण एवं सचेतनता वृद्धि। आमे समस्त वर्षा जल संरक्षण प्रकल्प नै पदक्षेप ग्रहण करिबा उचित। वर्षा पानी को सीधा सळख नाळरे बोही जिबाकु न देइ माटी भितर को रिचार्ज वेल माध्यमरे छडा कले भूतल जलस्तर वृद्धि पाइबो। सेही भलि प्राकृतिक जलाशय, नदी, पोखरी एवं आर्द्रभूमि गुडिक जल को धरि रखि भूतल जलस्तर वृद्धि रे सहायक होइथांति। तेणु पोती होइ पडुथबा एभलि प्राकृतिक जल संरक्षण माध्यम को पुनरुद्धार करिबा जरूरी। कृषि क्षेत्र रे बुंदा जल सेचन प्रक्रिया एक उल्लेखनीय माध्यम। एहा द्वारा अति कम जल रे चाष कार्य संभव होइ परिबो। वर्षा जल को संरक्षण करि रखिबारे वृक्षर गुरुत्वपूर्ण भूमिका रहिछि। तेणु जंगल सृष्टि ओ चारा रोपण उपरे ध्यान केन्द्रीभूत करिबाकु पडिबो। केन्द्र सरकार को द्वितीय पर्याय अमृत योजना अधीन रे 121,000 एकर जल उत्स एवं 12,750 एकर सबुज अंचल को पुनरुद्धार करिबार प्रयास होइछि। एथिरे 900 रु अधिक स्थानीय संस्था को शामिल करा जाइछि। स्थानीय संप्रदाय गुडिकर अंशग्रहण माध्यम रे एही अभियान को एक जन आंदोलन रे रूपांतरित करा जाइ पारुछि। जलशक्ति अभियान जन भागीदारी द्वितीय पर्याय कार्यक्रम अधीन रे 79 नगर निगम माध्यम रे 1,99,278 टी जल रिचार्ज गठन करा जाइछि। सहरांचल गुडिकर भूतल जल रिचार्ज एवं जल संरक्षण क्षेत्र रे एहा उल्लेखनीय सब्यस्त होइछि। जल अपचय को रोकिबा एवं जल संरक्षण रे प्रत्येक नागरिकंकर गुरुत्वपूर्ण भूमिका रहिछि। तेणु जल ही जीवन उक्ति को केवल स्लोगान ने सीमित न रखे आमर कार्यधारा रे प्रतिफलित करिबा को आसंतु संकल्पबद्ध हेबा।

आउ बजार सहित संजोग करबार बहुत जरूरी है। इक्रिसाट सहित ई सहभागिता राज्य लाख लाख एसएचजी सदस्य मानक चास क्षेत्र थी अत्का सक्षम करवा इ बुझामणा पत्र अनुसार भिन भिन जिला बहुत कृषि आधारित प्रकल्प हाथके नियाजिबा। मृत्तिका संरक्षण आउ जल विभाजिका विकास निर्देशक सुब्रत कुमार पंडा खड़ियाल ब्लॉक रा भिन भिन पंचायत बुलिकरी मृत्तिका संरक्षण जल संरक्षण चासी आउ विभाजिका भित्तिक भिन भिन उन्नयनमूलक काम रा समीक्षा करिछन। तांकर ई गस्त अवसर से पहला डाबरी पंचायत रा भैराजपुर गाँ के जाइकरी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अधीनति बतक पालन लगे साहज पाइथवार स्वयं सहायक गोष्ठी सदस्य मानकर संगे आलोचना करथिले। ई अवसर से स्थानीय चासी मानकु भेटिकरी गोष्ठी सदस्य मानकर संगे मिसिकरी आम आउ नड़िया गछ जगाबार सहित परिवेश सुरक्षा आउ फलचास के तहकाबा लगी परामर्श देथिले। चलती शिक्षा बच्चर लगी राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय मान के पहला खेपे ना लेखा सेसीजे ई खेपे 382,835 जन ना लेखे जन आइबा 23 तारीख ना लेखा लगी दुई नंबर खेप मेधा तालिका बाहरबा। बौद्ध जिलार पाताली श्रीक्षेत्र नायकपड़ा गुंफान तृतीया तिथि अवसर श्री जगन्नाथंकर बासी रथयात्रा हो जाइछि। इतार सहित बौद्धटे गाँव नबिल आज बासी रथयात्रा हो जाइछि। बौद्ध जिलान राजाराजुड़ा अमलनु केतरा जगान तृतीया तिथि अवसर रथयात्रा करा जाइछि जेंटा बासी रथयात्रा भाबे प्रसिद्ध लाभ करिछि। बौद्ध शहर भिन भिन जगान सखालु तीनि महापुरुंकर नीतिकांति सर्वारुत्रु मैदानर 2 बजे पहंडी मूलैथिला आउ बेलबुड़ार 6 बजे रथघिचा होइछि। समकर पाक्के न्यायर सुफल पहुँचाबा लक्ष्य नेकरी आज पालन कराउचे अंतर्जातीय न्याय दिवस। न्याय प्रदान सुनिश्चित करवाटा जितकी जरूरी तल स्तर के इटाके पहुँचाबाटा सेतकी प्रासंगिक भी लाए। इटाके नजरती रखिकी फी बछर जुलाई 17 तारीख अंतर्जातीय न्याय दिवस पालन कराएसी। सूचना अनुसार 2002 मसीहा जुलाई 1 तारीख दिन नेदरलैंड्र हेक सहन अंतर्जातीय अपराध न्यायालय काम मूल होता यादे 125 देश इ संस्थान सदस्य अछन। अंतर्जातीय न्यायालय 15 जन विचारपति अछन। युद्ध प्रभावित मानविकता विरोधी होतबार अपराधी बागी भिन भिन क्षेत्र थी न्याय देबार उपरे ई दिवस गुरुत्वारोप करसी। ई बछर ई दिवस रो विषयवस्तु रहिछि सारा पृथ्वीन न्याय उत्तरदायित्व आउ मानवाधिकार रो प्रसार। संबलपुर महानगर निगम इलाकान बयड आउ जलबंदी समस्यार मुकाबला लगी आज जिल्लापालकर कार्यालय आंत विभागीय समन्वय गोटे जरूरी बैठक हो जाए। संबलपुर जिलापाल सिद्धेश्वर बलिराम मंदनकर अध्यक्षता होता बैठक थी महानगर निगम आयुक्त रेहान खत्री अतिरिक्त जिलापाल आउ महानगर निगम अधिकारी मानकर सहित जलसेचन पूर्त आउ टाउन प्लानिंग विभाग अधिकारी माने उपस्थित थिले। बैठक थी सहर इलाकान जलबंदी समस्यार तुर्ति आउ स्थायी समाधान फी वार्ड स्थितिर विश्लेषण समन्वित पदक्षेप आउ मास्टर प्लान थी दरकारी व्यवस्था बाबदे विस्तृत आलोचना करिथिले। पाणीपाक उत्तर पश्चिम बंगोपसागर आउ ताके लागी करिथिबार उत्तर ओडिशा आउ पश्चिमबंग समुद्र खणिन सक्रिय थिबार लघुचापर प्रभाव थी राज्य भिन भिन जगान वर्षा लागि रहिछि। आबा 24 घंटा भितरे बरगढ़ सुवर्णपुर बौद्ध आउ बलांगीर जिल्लार गोटे जोड़े जगान अति जबर वर्षा हेबा बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र तरफ सतर्क सूचना जारी करा जाइछि। सियाड़े संबलपुर झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ देवगढ़ नुआपड़ा कलाहांडी कंधमाल नवरंगपुर अनुगुल केन्दुझर मयूरभंज जिलान जबर वर्षा हेबार संभावना रहिछि। आबा काल तक हीराकुद जलभंडारन जलस्तर बढ़िपे जलसंपद विभाग सर्वोच्च जंत्री दिलीप राउत कहिछन। बेलबुड़र 6 बजे तक हीराकुद जलभंडार जलस्तर 609.75 फुट रही। इ समयति जलभंडार के फी सेकेंड थी 32,622 घन फुट पैन आसुचे। रथयात्रार 2 नंबर दिने आज शरधाबालीन पहुँचला तीन रथ आबा काल हेबा आड़प मंडप विजे नीति। अमृत भारत स्टेशन योजना थी ओडिशार 7 सहित देशर 75 रेल स्टेशन रो लोकार्पण कले प्रधानमंत्री। एसएचजी मानकर तरफ परिचालित कृषि उद्योग के अत्का बरकस करबार लक्ष्य थी स्वाक्षरित हेला बुझामणा पत्र। आउर लघुचापर प्रभाव थी राज्यर भिन भिन जगान जबर वर्षा के नेकर सतर्क सूचना जारी कला पाणीपाग केन्द्र। आजिर आंचलिक खबर इन शेष होला। जुहार।

नमस्कार, जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। पवित्र आषाढ़ शुक्लपक्ष द्वितीया तिथि महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर विश्वप्रसिद्ध रथयात्रा अवसर में कलाहांडी जिला भवानीपाटणा सहर स्थित जगन्नाथ मंदिर परिसर में महा आडंबर एवं भाव भक्तिर सह रथयात्रा अनुष्ठित होता। अवसर में प्रातः कालरु स्वतंत्र नीतिकांति संपन्न कराई अपराह्नरे महाप्रभु बलभद्र, माता सुभद्रा और प्रभु श्री जगन्नाथंक चतुर्धा मूर्ति को घंट घंटा शंख काहाली संकीर्तनर ताले ताले भावावेगर सहित अगणित भक्त मानक समावेश रे धाड़ी पहंडी माध्यम रे रथारूढ़ करा जाई थिला। एही रथयात्रा

0: जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। मु झुनुमाला साहू धर्मगढ़ रु आसी आउ महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा श्री गुंडीचा रथयात्रा भवानीपाटणा को मु सबु प्रतिवर्ष मु देखिबा पई आसी अछि। वर्तमान मु बालाजी मंदिर स्थित जगन्नाथ बलभद्र सुभद्राकर रथटणा कार्यक्रम रे मु योगदान करी पुणि फेरी आसिली आउ स्टाइल बाजार पाख जगन्नाथ मंदिर पाखकु पुणि सेथिरे मध्य आउ रथटणारे मु भाग नेली आउ बहुत वर्षा हेबा सत्वे मध्य जनसाधारण माने आउ बहुत आनंद उत्साह रे एही रथयात्रा रे योगदान करचंती। एहा मोर बहुत खुशी आ प्रतिवर्ष मु रथयात्रा रे उपस्थित होई भगवान श्री जगन्नाथंकु मोर गुहारी मु सुनाउची जय जगन्नाथ।
1: जय जगन्नाथ। मुई जशोवंती साहू घर जलेश्वर मंदिर पड़ा प्रभुंकर रथयात्रा देखि आसीछे। वर्षा भी टिके टिके हेउछे, लोकमानकर भीड़ बहुत हेउछे। आज आमर कलाहंडीर महाराज महाप्रभुंकु पछोटी आनीथिले, एते भीड़ भितरे भी मुई रथ टाणी पारली तो बहुत खुशी लागुछे। आउ दुकान मने भी बसीछे तो मुई किछि किणा कोणी करमी। जय जगन्नाथ।
2: एही रथयात्रा रे जिला प्रशासन आरक्षी बाहिनी एवं मंदिर परिचालना कमिटीर सदस्य माने महाप्रभुंकर रथयात्रा को

0: नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। पीवी सिंधु ने जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में जगह बनाई। हॉकी इंडिया ने आगामी हॉकी विश्व कप के लिए भारतीय महिला टीम की घोषणा की। सलीमा टेटे को टीम की कमान सौंपी। हंसिका लांबा ने बुडापेस्ट रेसलिंग सीरीज में रजत पदक जीता। नेहा और मानसी स्वर्ण पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र सरकार कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक गेम्स में युवाओं को हर सुविधा प्रदान करेगी। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हराया, श्रृंखला 1-1 से बराबर की। और फीबा बास्केटबॉल अंडर 18 महिला एशिया कप में भारत ने इंडोनेशिया को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से, जहां अनुभवी खिलाड़ी पीवी सिंधु ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
1: भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने जापान ओपन सुपर 750 के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का मुकाबला नोजोमी ओकुहारा से होना था, लेकिन वह चोट के कारण मैच में हिस्सा नहीं ले सकी। ये इस सीजन में सिंधु का तीसरा सेमीफाइनल है। इससे पहले वे मलेशिया सुपर 1000 और ऑस्ट्रेलिया सुपर 500 के सेमीफाइनल में पहुंची थी। इसके साथ ही 2023 डेनमार्क ओपन के बाद ये उनका पहला सुपर 750 सेमीफाइनल है। 31 वर्षीय खिलाड़ी पीवी सिंधु की निगाहें इस सीजन का पहला खिताब जीतने पर होंगी। सेमीफाइनल मुकाबले में उनका सामना टोक्यो ओलंपिक चैंपियन और विश्व की चौथी नंबर खिलाड़ी चीन की चेन युफई से होगा। सिंधु और चेन युफई के बीच अब तक कड़ा मुकाबला देखने को मिला है। हालांकि हेड टू हेड रिकॉर्ड में सिंधु उनसे 6-8 से पीछे हैं। सिंधु को युफई के खिलाफ पिछले 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। सेमीफाइनल में जीत न केवल सिंधु के हारने के इस सिलसिले को खत्म करेगी, बल्कि लगभग 3 साल में उनके पहले सुपर 750 फाइनल में पहुंचने का रास्ता भी साफ होगा। अब भारतीय प्रशंसकों की निगाहें

0: दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु पर ही टिकी होंगी, क्योंकि इस प्रतियोगिता में सिंधु अब भारत की एकमात्र दावेदार हैं। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
1: हालांकि हेड टू हेड रिकॉर्ड में सिंधु 6-8 से पीछे हैं, लेकिन कल भारतीय प्रशंसकों की निगाहें सिंधु के अच्छे खेल प्रदर्शन पर होंगी और उम्मीद करें कि वो फाइनल का टिकट अपना पक्का कर लें। और अब बात करते हैं हॉकी पर। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे को टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में खेली जाएगी। सुनते हैं किन खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया।
2: बेंगलुरु में नेशनल कैंप में ट्रेनिंग कर रही इस महिला टीम में अनुभवी खिलाड़ियों और होनहार युवा खिलाड़ियों का संगम है। इन युवा खिलाड़ियों ने हाल के इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में सभी को प्रभावित किया है। खासकर पिछले महीने न्यूजीलैंड में हुए FIH नेशंस कप में टीम का प्रदर्शन दमदार रहा था और भारत ने बिना कोई मैच हारे खिताब पर कब्जा जमाया था। विश्व कप के लिए टीम में सविता और बिचू देवी खारीबम को गोलकीपर के तौर पर शामिल किया गया है, जबकि डिफेंस यूनिट में इशिका चौधरी, सुशीला चानू पुखरामबम, लालथंत लुंग, ज्योति और शिल्पी डबास शामिल हैं। मिडफील्ड में कप्तान सलीमा के साथ निक्की प्रधान, साक्षी राणा, सुनेलिता टोप्पो, नेहा और दीपिका सोरेंग को रखा गया है। वहीं फॉरवर्ड लाइन में लाल रेमसियामी, ऋतुजा दादासो पिसल, नवनीत कौर, दीपिका, इशिका, बलजीत कौर और ब्यूटी डुंगडुंग को जगह दी गई है। विश्व कप के लिए चुनी गई टीम को लेकर कोच मारिजाने ने कहा कि हमने खिलाड़ियों का एक संतुलित ग्रुप चुना है। टीम ने टूर्नामेंट से पहले कड़ी मेहनत की है और हमें इस ग्रुप की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। हम दुनिया की बेहतरीन टीमों के खिलाफ खेलने और सबसे बड़े मंच पर शानदार प्रदर्शन करने के लिए उत्साहित हैं। भारतीय कोच ने कहा कि ये विश्व कप आगामी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारियों के लिए बेहद अहम है।
3: I take it as a preparation and take as said we are going to the World Cup to perform and the performance will help us to be at our best at the Asian Games because at the end we will want to win the Asian Games for the qualification. So it's not just one, the World Cup will, the information from the World Cup will help us in at the Asian Games, but yeah, performing at both will be great.
2: भारतीय टीम को चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ पूल डी में रखा गया है। टीम अपने सभी पूल स्टेज मैच नीदरलैंड्स के एम्स्टेलवीन में वागेनर हॉकी स्टेडियम में खेलेगी। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 16 अगस्त को चीन के खिलाफ करेगी। इसके बाद 18 अगस्त को साउथ अफ्रीका और 20 अगस्त को इंग्लैंड के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करेगी। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
1: भारत ने हाल ही में न्यूजीलैंड में हुए FIH नेशंस कप में दमदार प्रदर्शन किया था और भारतीय प्रशंसकों को अब उम्मीद होगी कि भारत इस विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन करे ताकि अंतर्राष्ट्रीय आगामी टूर्नामेंट्स में भी उनकी मजबूत दावेदारी पेश होते रहे। अब सीधे चलते हैं बॉक्सिंग कुश्ती रिंग की ओर। बुडापेस्ट में भारतीय महिला पहलवान हंसिका लांबा ने पोलियाक इमरे वर्गा जानूस और कोजमा इस्तवान मेमोरियल 2026 रेसलिंग टूर्नामेंट में रजत पदक जीता। इस प्रतियोगिता को बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज भी कहा जाता है। 59 किलोग्राम महिला वर्ग में नेहा और 62 किलोग्राम वर्ग में मानसी स्वर्ण पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। साथ ही इसी भार वर्ग में सविता भी कांस्य पदक के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगी। एक रिपोर्ट।
4: बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज में महिलाओं के 55 किलोग्राम स्पर्धा में हंसिका लांबा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता। 19 वर्षीय हंसिका को महिलाओं की फ्रीस्टाइल कैटेगरी में फ्रीस्टाइल कैटेगरी के फाइनल में यूक्रेन की नतालिया क्लिवचुत्स्का से 5-0 से हार का सामना करना पड़ा। हंसिका लांबा ने क्वार्टर फाइनल में तुर्की की ग्वानुक किम को 8-4 से हराकर पदक मैच के लिए क्वालिफाई कर लिया। बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज में भारत के पदकों की संख्या अब 5 हो गई है। गुरुवार को मिले 2 पदकों के अलावा ओलंपिक मेडलिस्ट अमन सहरावत ने बुधवार को पुरुषों के 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जबकि दीपक ने 61 और विशाल कालिरमानी ने 65 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीते। वर्ल्ड चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता अंतिम पंघाल कल महिलाओं के 53 किलोग्राम डिवीजन में मुकाबला करेंगी। जया भारती, स्पोर्ट्स कैन।
1: भारतीय पहलवानों ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और अब सबकी निगाहें नेहा, मानसी, सविता और अंतिम पंघाल पर होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जालंधर में विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
5: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूं, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी।

0: आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट्स इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आप स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वर्ष 2030 में भारत कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा। 2036 में ओलंपिक गेम्स भारत में हो, इसके लिए भी भारत पूरी तैयारी कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में अहमदाबाद में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स भी आयोजित की जाएंगी।
0: साल 2030 में भारत कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाला, 2036 में ओलंपिक गेम्स भारत में हो, इसके लिए भी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। इसलिए हर खिलाड़ी को जोरदार तैयारी करनी है, पूरा दमखम लगाना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि डबल इंजन की बीजेपी सरकार आपको हर सुविधा देगी। आने वाले समय में अहमदाबाद में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स जो होने वाली, आप इसके लिए भी खूब तैयारी कीजिए। मुझे पक्का विश्वास है हरियाणा के बेटे बेटियां हमेशा की तरह इनमें भी अपना परचम लहराएंगे।
1: अब सीधे चलते हैं बास्केटबॉल कोर्ट की ओर, जहां भारतीय महिला टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन कर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। फीबा बास्केटबॉल अंडर 18 महिला एशिया कप में भारत ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में भारत ने इंडोनेशिया को 79-46 से हराकर ग्रुप ए में शीर्ष स्थान हासिल किया। भारत का सेमीफाइनल मुकाबला कल थाईलैंड के बैंकॉक में खेला जाएगा। भारत ने इस प्रतियोगिता में थाईलैंड और ओमान को हराकर दमदार प्रदर्शन किया है। भारतीय टीम ने अपने ओपनिंग मुकाबले में थाईलैंड को 106-62 से और दूसरे मैच में ओमान को 99-17 से हराया था। अब सीधे रुख कर लेते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। कार्डिफ में खेले गए दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर कर ली है। दिग्गज बल्लेबाज जो रूट को नाबाद 99 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
2: पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने सदी हुई शुरुआत की। कप्तान शुभमन गिल ने रोहित शर्मा के साथ पहले विकेट के लिए 44 रन की साझेदारी की। गिल 31 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद रोहित शर्मा ने विराट कोहली के साथ दूसरे विकेट के लिए 60 रन जोड़े। रोहित ने टीम के खाते में 26 रन का योगदान दिया। 111 के स्कोर पर ईशान किशन के रूप में 3रा विकेट गिरा। इसके बाद श्रेयस अय्यर ने विराट कोहली के साथ चौथे विकेट के लिए 67 रन की साझेदारी करते हुए टीम का स्कोर 178 रन तक पहुंचाया। लेकिन इस साझेदारी के टूटने के बाद विकेटों का पतझड़ लग गया। कोहली ने 66 गेंद में 8 चौकों के साथ 65 रन की पारी खेली, जबकि अय्यर 71 गेंद में 7 चौकों के साथ 66 रन बनाकर आउट हुए। जसप्रीत बुमराह ने 13 गेंद में नाबाद 20 रन बनाए। भारतीय पारी 44 ओवर में केवल 233 रन पर सिमट गई। इंग्लैंड की ओर से जोफ्रा आर्चर और गस एटकिंसन ने 3-3 विकेट लिए। 234 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की शुरुआत निराशाजनक रही। बेन डकेट पहली ही गेंद पर जसप्रीत बुमराह का शिकार बने। इसके बाद जैकब बेथेल भी जल्दी ही पेविलियन लौट गए। इसके बाद जो रूट ने मोर्चा संभाला। रूट ने विल जैक्स के साथ 6 विकेट के लिए 72 रन जुटाकर टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया। रूट ने गस एटकिंसन के साथ 7वें विकेट के लिए 38 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 45वें ओवर में आसान जीत दिलाई। मैच के बाद जो रूट ने कहा कि हम लगातार एक दिवसीय प्रारूप में बेहतर खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं।
3: In Sri Lanka, you know, the first team to win there for 4 years, and similarly to that series, we lost the first game, learned lessons, and evolved and got better and adapted, and that's exactly what we did again today. The challenge is, can we do it at Lords when the pressure's on against another, again, a brilliant team, the number one ranked team in the world? For us to stand up and play like that, I think shows where we are, and it's a good benchmark for us. So, you know, let's back it up again at Lords, and then I think there's a very different look to or perception to where this team is.
2: Bharatiya captain Shubman Gill ne kaha ki madhyakram mein lagatar wicket girna haar ka karan bana.
4: Quite disappointing, to be honest. We thought 300-310 would be a good total after 25 overs. We were at a good position, but we lost too many wickets in the middle overs. We know our tail-enders are not the best batsmen, but I think we expected a bit more from our lower mid-order, and we were not able to capitalize on the start that we got. But hopefully, the next time we get there, we'll try to build some small partnerships and take it on from there.
2: श्रृंखला का अंतिम और निर्णायक मैच 19 जुलाई को लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: बुलावायो में दूसरे टी20

0: क्रिकेट मुकाबले में बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 186 रन बनाए, जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 152 रन पर ही सिमट गई। तीन मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर है। पहले मुकाबले में जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश को 32 रन से हराया था। उधर मध्य प्रदेश के खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश ने सारंग ने कल भारतीय महिला क्रिकेट टीम की इंग्लैंड पर लॉर्ड्स में ऐतिहासिक जीत में अहम भूमिका निभाने वाली तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ को सम्मानित किया। मध्य प्रदेश की रहने वाली क्रांति गौड़ ने टेस्ट मैच में कुल 7 विकेट लेकर भारत की 270 रन की शानदार जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सरकार ने देश में खेलों के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी की है। ये अधिनियम खेलों में डोपिंग को रोकने, खिलाड़ियों के अधिकारों की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत डोपिंग रोधी मानकों के अनुसार खेल प्रतियोगिताओं की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक व्यापक वैधानिक आधार प्रदान करता है। और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा आप sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जींद से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना होंगी। नीति आयोग ने निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया, गुजरात शीर्ष पर, इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु। और FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली रूप से लोकार्पण भी किया। इनमें SAS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत ये रेलवे स्टेशन सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
2: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा NDA सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
1: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बनाकर पेश कर रही है।
2: साथियों, केंद्र सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है कि पंजाब की जनता को केंद्र की हर स्कीम का लाभ मिले, लेकिन कट्टर बेईमान पार्टी की सरकार में यहाँ लूट का खुला

0: खेल चल रहा है। बीते 12 वर्षों में केंद्र से पंजाब को लाखों करोड़ रुपए भेजे गए। इस पैसे से गांव के रास्ते बनते, नहरें बनती, मंडियां बनती, लेकिन पंजाब सरकार ने उस पैसे को सही जगह खर्च नहीं किया।
1: श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
0: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट्स इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आप स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार पंजाब में रेलवे की कई बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रही है।
2: आज पंजाब में करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए के रेलवे के काम चल रहे हैं। 1800 करोड़ रुपए की लागत से 30 स्टेशनों का नव निर्माण हो रहा है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। अब तक जालंधर कैंट, आनंदपुर साहिब, मुक्तसर और मोहाली स्टेशन का उद्घाटन हो चुका है। 12 वंदे भारत सर्विसेज चल रही है, 4 अमृत भारत सर्विसेज चल रही है और पंजाब में पूरा 100% इलेक्ट्रीफाई कर दिया है रेलवे के नेटवर्क को।
1: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ को नियोजित शहरी विकास का एक मानक बताया।
0: चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहां एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस और रिसर्च से जुड़े बड़े संस्थान एक साथ मौजूद है। बहुत कम शहरों के पास ऐसा सामर्थ्य होता है। आने वाले समय में यही संस्थान नई टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, स्टार्टअप्स और इनोवेशन के बड़े केंद्र बन सकते हैं। आज एजुकेशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी इस यात्रा को नई गति दे रही।
1: हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इससे पहले आज मंत्रियों के समूह की बैठक नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, के राममोहन नायडू और किरेन रिजिजू बैठक में उपस्थित थे। इस दौरान आगामी संसदीय सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है।
3: ये राजकीय यात्राएं मोल्दोवा गणराज्य, उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य और रोमानिया के राष्ट्रपतियों के निमंत्रण पर की जा रही हैं। तीन देशों की ये यात्रा ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा गणराज्य और उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। रोमानिया की यात्रा 3 दशकों से भी ज्यादा समय में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा होगी।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसाराव

0: पेटा में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री वर्ष 2014 से ही हर गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं, ताकि किसानों, कृषि और हथकरघा श्रमिकों तथा अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को संस्थागत बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सफर संगठित स्वैच्छिक कार्यों की शक्ति और निस्वार्थ सेवा के चिरस्थायी मूल्यों का प्रमाण है। नई दिल्ली में श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी की पुस्तक आरएसएस 800 सेवा एकता और बलिदान की एक शताब्दी का विमोचन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने निस्वार्थ सेवा और राष्ट्र निर्माण के माध्यम से एकता और राष्ट्रीय चेतना के आदर्शों को मजबूत किया है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आरएसएस ने हर प्रतिकूल परिस्थिति में राष्ट्रीय हितों, सेवा और लोकतंत्र की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। इस योजना के अंतर्गत देश भर में 1,90,000 करोड़ रुपए से अधिक के कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पश्चिम बंगाल के कर्ण सुबर्ण रेलवे स्टेशन के पास आज स्कूल वैन और यात्री रेलगाड़ी की टक्कर में 2 स्कूली बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पूर्वी रेलवे ने इस मामले में उच्च स्तरीय जाँच समिति गठित करने का आदेश दिया है। कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर राष्ट्रीय महिला आयोग का 2 दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा और ओडिशा भी शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हैं। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। इसमें वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निवेश आकर्षित करने की दृष्टि से सबसे अच्छी स्थिति वाले राज्यों का उल्लेख है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज 1% से अधिक की बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 965 अंक ऊपर चढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 262 अंक के उछाल के साथ 24,334 पर पहुंच गया। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 7 पैसे ऊपर आकर 96.28 रुपए पर बंद हुआ।
0: सरकार ने देश में खेलों के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी की है। ये अधिनियम खेलों में डोपिंग को रोकने, खिलाड़ियों के अधिकारों की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत डोपिंग रोधी मानकों के अनुसार खेल प्रतियोगिताओं की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक व्यापक वैधानिक आधार प्रदान करता है। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेट ऑलराउंडर गैरी सोबार्स का आज निधन हो गया। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उन्होंने 1 ओवर में 6 छक्के लगाने का भी कारनामा अपने नाम किया। सर गारफील्ड सोबर्स ने वेस्टइंडीज के लिए 93 टेस्ट मैच में 8,032 रन और 235 विकेट लिए। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम

0: और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में खेली जाएगी। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला विश्व की चौथे नंबर की चीन की खिलाड़ी चेन युफई से होगा। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में रविवार तक तेज बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जींद से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की तीन देशों की यात्रा पर होंगी। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेट गैरी सोबर्स का निधन। और FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय टीम की घोषणा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches development projects worth around 25,000 crore rupees from Haryana, Punjab and Chandigarh. Flags off India's first hydrogen-powered train from Jind. Prime Minister says centre is committed to ease of living and new opportunities for every citizen with the spirit of Nagrik Deva Bhava. Government convenes all-party meeting on Sunday ahead of monsoon session of Parliament. President Draupadi Murmu to embark on three-nation visit to Moldova, North Macedonia and Romania from Sunday. Niti Aayog releases Investment Friendliness Index 2026. Gujarat emerges as the top performer, followed by Maharashtra and Tamil Nadu. Legendary West Indian cricketer Gary Sobers passes away. An Indian team announced for FIH Women's Hockey World Cup to be held in Belgium and Netherlands next month. Salima Tete named the captain. Prime Minister Narendra Modi launched multiple development projects worth around 25,000 crore rupees from Haryana, Punjab and Chandigarh today. The projects aim at strengthening connectivity, improving passenger convenience and accelerating economic development in the region. In Jalandhar this evening, the Prime Minister inaugurated and laid foundation stones of various rail and road infrastructure projects worth over 5,470 crore rupees. Inaugurated 75 redeveloped railway stations, including Jalandhar Cant under the Amrit Bharat Station Scheme. Addressing a public gathering in Jalandhar, Prime Minister Modi said, the India government at the centre prioritises serving every citizen of India, making their lives easier and providing them with new opportunities for progress. He said it is the endeavour to ensure that every family, whether poor or middle class, receives the best possible facilities, and this spirit of Nagrik Deva Bhava is reflected in government's work.
2: केंद्र की भाजपा सरकार की भी प्राथमिकता है भारत के हर नागरिक की सेवा, भारत के हर नागरिक का जीवन आसान बनाना और उसे आगे बढ़ने के लिए नए नए अवसर उपलब्ध कराना और इसलिए हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
1: The Prime Minister said these railway stations are equipped with all the modern facilities. He said the transformation of these stations is part of one of the world's largest station redevelopment programs, Amrit Bharat Station Scheme.
2: बीते वर्षों में भाजपा सरकार ने स्थितियों को बदलना शुरू किया। आज पूरे देश में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को

0: ए दुर्ग मु प्रथमे अधिकार करिछि
1: मु प्रथमे अधिकार करिछि
0: मोर सैन्य माने प्रथमे एठार प्रवेश करिछि
1: ना मोर सैन्य माने प्रथमे प्रवेश करिछि
0: मु वर्तमान ए दुर्गर अधिकारी
1: ना अधिकारी मु
0: के परि
1: अधिकार थिबारु
0: कि अधिकार
1: राजार जे अधिकार राज्य रे थाय
0: के राजा
1: समग्र ओडिसा राजा मु केवल ए दुर्गर नुहे रामचंद्र
0: तुमे समग्र पृथ्वीर राजा होई पारो किंतु ए दुर्गर कदापि नुह विक्रमदेव
1: नुहे
0: ना ना नुह
1: तबे देखा जाओ कि ए दुर्गर राजा
0: किपरी हाँ हाँ किपरी देख देखा जीव कि ए दुर्गर राजा
1: जार शक्ति अधिक
0: कार शक्ति अधिक
1: मोर ना परीक्षा कर देखिबा कहार अधिक
0: परीक्षा
1: हाँ परीक्षा आत्मरक्षा कर बर्बर
0: आत्मरक्षा
1: हाँ आत्मरक्षा का पुरुष
2: महाराज सेनापति अर्जुन सिंह आक्रमण करी
1: करू जा सैनिक आगे निष्पत्ति हो कि दुर्ग राजा नचे युद्ध रे की लाभ
0: ता सत्य विक्रम देव युद्ध रे की लाभ आगे निष्पत्ति हो कि दुर्ग राजा
1: से तो निष्पत्ति होई समग्र ओडिसा देश जे राजा ता निकट रे दुर्ग खंड रे प्रश्न पुणी काई की
0: ए शरीर रे बिंदु रक्त थिबा जाए दुर्ग तुमर नुहे विक्रम देव
2: अर्जुन सिंह दुर्ग द्वार रे महाराज
1: जा सैनिक कथा कहो नहीं ए शरीर रे बिंदु रक्त थिबा जाए दुर्ग मोर रामचंद्र देव
0: अच्छा देखा जाओ विक्रम देव
1: देखा जाओ
0: किए हेला दुर्गर राजा विक्रम देव
1: किए हेला
0: एई तो अर्जुन सिंह तुम्हें जयलाभ करिअछ तुम्हार पुरुषोत्तमंकर प्रधान शत्रु एई विक्रम देव बड़ का पुरुष बड़ भीरु बड़ दुर्बल बध करो नचे जाकु बंदी करनी
3: शत्रुर साहाज्य शत्रु को बध बा बंदी करने खंडा जाने ना रामचंद्र देव इच्छा हेले उभयू बध करती बंदी करनी किंतु युवक द्वय सम्राट कपिलेन्द्र देवंकर अन्न जल रे शरीर पुष्ट ए प्राण प्रतिपालित से इच्छा ना ओडिशा गजपतिंकर बक्सी अन्याय रे कहार प्राण निए नाही प्राणदान करिबा खंडायतर धर्म जाओ युवक द्वय ए दुर्गरु सत्र निष्क्रांत हो वर्तमान ए दुर्ग महाराजांकर शत्रु एड़े क्षीण तरुण रवीर धीर विचरण रे हिमालयर तुषार शिला विगलित हला परि विद्रोही वृंद क्षणक मध्यरे बल वीर्य हराई देछन्ति भविष्यत उज्ज्वल मा उत्कल भूमि
4: Who's the other?

0: महाराज समय उपस्थित
1: ना ये तो अन्याय
0: अन्याय कौन महाराज
1: अन्याय नुहे प्रहरी घोर अन्याय
0: अन्याय तो मोर महाराज

0: युद्ध शेष विक्रम नरसिंह समस्ते आजि बंदी एबे मानंकु मुक्त करिदे कण भल नुहे मंत्री
1: महाराजांकर जे इच्छा आ सेनापतिंकर जे अभिमत कौन सेनापति
0: साम्राज्य पक्षरे कौन सेनापति क्षतिर संभावना अछि
2: महाराजांक साम्राज्यर क्षति करिवार आशंका कौनसी व्यक्ति ठारु विशेष नाही महाराज किंतु कारारु मुक्त होले सेमाने विद्रोह घटाइबे एही मात्र संभावना
0: तेबे आजीवन कौन तेबे बंदी करी रखिबा सेमानंकु
1: राज्यर समृद्धि पाई प्रजागणंकर सौभाग्य निमन्ते रखिबा अभिहित नुहे महाराज
0: आजीवन बंदी किंतु मंत्री एथिरे सेमानंक प्राणरे की घोर अशांति हेबो नायत सेमानंकर विशाल साम्राज्य मु बलपूर्वक अधिकार कली सेथिरे सेमाने वर्तमान सुद्धा नीरव सेमाने एबे आम्भर बंदी
3: बंदी प्रति उपयुक्त व्यवहार हेउचि बंधनरु मुक्त कौन कहुचे अर्जुन सिंह
4: निश्चय महाराज बंधनरु मुक्ति
2: मुक्ति महाराज
3: ए विजय तुम्भर सेनापति आउ तुम्भ वृद्ध बक्सी अर्जुन सिंहंकर विक्रम नरसिंह गोपाल किशोर देव समस्ते आज तुम्भर बंदी आउ मंत्री ए विशाल राज्यर चालक आपण इच्छा हले अनुमति दियंतु सेमाने बंधनरु मुक्त हेबे
1: महाराजंकर आदेश ही आम्भ मानंकर इच्छा मुक्त हुंतु महाराज
3: हाँ सेमानंकु मुक्ति दियो सेमाने आजिरे मुक्त

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर पूरी खबर।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण भी किया। इनमें एसएएस नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवोभव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में नाकाम रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
1: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूं, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट्स इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आज स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
0: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक इलाके से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया।